मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, वहीं संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर दूसरों को सम्मान देने में आनंदित होता है। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे माँ, मैं आपके द्वार पर एक याचक बनकर आया हूँ। आप मेरी सूनी और खाली झोली को अपनी कृपा और आशीर्वाद से भर दीजिए। इस भक्ति भाव के साथ सुनिए ये भक्ति गीत।

हे ईश्वर, आपकी बनाई हुई इस अद्भुत सृष्टि और प्रकृति की महिमा अपरंपार है। मैं इस पर अपना सर्वस्व न्योछावर करता हूँ।

संसार में सभी को अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने पड़ते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोगों को हमेशा सुख मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को दुख का सामना करना पड़ता है। यही प्रकृति का नियम है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब सुनिए हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान।

निषादराज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन काह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छा देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बाकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान। आवाज अनुराधा पौडवाल की थी। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अगला कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे धान की प्योद तैयार करना, इसके बारे में। किसान भाइयों, मई और जून का महीना माना गया है नर्सरी तैयार करने का, लेकिन जब ज़्यादा धूप पड़े थी उस टाइम पे प्योद बोन का कोई सही मौका नहीं था। उस टाइम पे जिन भाइयों ने बो कर देखी है, हो सकता है उसमें कोई दिक्कत आ गई हो, लेकिन ईब कई दिन तक मौसम ठीक चल रहा है। बास मार के अपने खेत ने बढ़िया एक सा करके भुर भुरा करके मिट्टी में नमी हो, उसमें कोई डली ना हो, साफ सुथरा खेत ने करके खरपतवार आदि तो साफ करके, और जब हम प्योद बोएंगे तो प्योद हमारी बढ़िया बनेगी। 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत पड़े है किले में। थोड़ा सा कम भी बीज होगा तो भी वो चल जाए है। 400-500 वर्ग फुट की क्यारी पर्याप्त मानी गई है एक किले के हिसाब से। उन्नत जो भी किस्म हमने लग गए कि हमने यह बोनी है, उसका बीज ले कर आएँ। बीज उपचारित हो तो बहुत बढ़िया है, ना तो उपचार भी हम कर सका हाँ उस

प्रकृति का ना करे हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। ये था एक संदेश आप सभी के लिए। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार पहले संस्कृत में, 7 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रशासनेन CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा OSM इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एक सदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षा क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्ष पदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तः कार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रान्तरे परिषदा गतवासरे द्वादशकक्षायाः छात्राणाम् अङ्कसत्यापनार्थम् उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्याङ्कनार्थं च अन्तर्जालपटलम् आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्याङ्कितानाम् उत्तरपत्राणां स्कान् इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मू वर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचितमार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्चन्यायालयस्य पञ्चन्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, सञ्जीवसचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्चन्यायालयीय न्यायविदसमितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्तिविषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य 42 संख्याकेभ्यः उत्कृष्टपञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां 34 ग्राम पञ्चायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च 8 पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे लक्षद्वीप तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामी दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडा वार्तासु। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं 6 क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a four-day visit to India beginning today. She will be accompanied by a high-level delegation, including ministers of foreign affairs, economy and finance, and science and technology. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi during her visit. The discussions will be focused on exploring avenues of cooperation in the areas of trade, investment, energy, renewable energy, healthcare and pharmaceutical. Senior Congress leader D.K. Shivkumar will be sworn in as Chief Minister of Karnataka today. Governor Thavarchand Gehlot will administer the oath of office and secrecy to Mr. Shivkumar and members of the new cabinet at Lok Bhavan in Bengaluru at 4 p.m. Mr. Shivkumar's appointment comes days after Mr. Siddaramaiah stepped down as chief minister, paving the way for his deputy to take over the post. West Bengal government will launch a major social welfare initiative, Annapurna Yojana, today. Chief Minister Subendu Adhikari will formally inaugurate the scheme. The launch will be a massive synchronized event spanning the entire state. While the Chief Minister leads the central inauguration, beneficiaries of the Annapurna Yojana will participate virtually across all blocks, municipalities and municipal corporations. The centre has signed Memorandum of Understanding with four states under the Jal Jeevan Mission 2.0 to enhance safe drinking water supply across rural India. The agreement has been signed with Arunachal Pradesh, Jharkhand, Tamil Nadu, Nagaland and Union Territory of Puducherry. The Ministry of Jal Shakti said the reform-linked MOU promotes a Gram Panchayat-led, service-based and community-centred approach to rural water governance. The initiative, aligned with the objectives of Jal Jeevan Mission 2.0, aims to ensure that every rural household has access to quality drinking water supply in adequate quantity on a regular basis through strengthened community participation. The government has invited nominations for the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2026. The last date for submission is 31st of July. The prestigious award is conferred by the President on children who have made exceptional contributions in various fields including bravery, social service, environment, sports, art and culture, and science and technology. The Ministry of Women and Child Development informed that nominations from any citizen will be received only through the National Awards portal on awards.gov.in. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in an accident in Surat yesterday. Eight people were killed and more than 15 people were injured when two Maharashtra State road transport buses collided near Bardoli town in Surat. The injured were admitted to a nearby hospital. Indian nationals will no longer require an airport transit visa when travelling to a third country through German airports beginning today. German Embassy in India announced that the exemption will simplify travel for Indian citizens transiting through Germany on their way to other international destinations. The embassy described the decision as a reflection of the growing partnership between the two countries. It said the move underlines the German government's commitment to deepening ties between the two countries, facilitating the movement of people. Bangladesh's Foreign Minister Khalilur Rahman has been elected president of 81st session of UN General Assembly. Dr. Rahman emerged victorious in a closely contested election held in UN General Assembly, garnering 99 votes against Cyprus's special envoy for multilateralism, Andreas Kakouris, who got 91 votes. His one-year tenure as head of the Chief Deliberative, Policymaking and Representative Organ of the United Nations will commence in September. In accordance with the established regional rotation, the president of the 81st session was to be elected from the Asia-Pacific group. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has congratulated Dr. Rahman on his election as UN General Assembly President. In women's cricket, England sailed to a 6-wicket win over India in the third and final T20 International to clinch the series 2-1 at the country ground, Taunton, in England last night. India felt confident after taking three early wickets, but a commanding partnership between Heather Knight and Alice Kepsey helped England chase down 180 with ease. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में मध्यम वर्ग कल्याण और कार्यक्रम चर्चा का विषय 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

युवा संसार में शाम 5:30 पर करियर काउंसलिंग के अंतर्गत नृत्य के क्षेत्र में रोजगार इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर कविता सैनी।

एनसीईआरटी द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर और एक अन्य प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुनवाया जाएगा दिन में 2:45 पर।

प्रातः 7:25 पर सुनना ना भूलें कार्यक्रम सुबह सवेरे। हमारी सेहत कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे अत्यधिक गर्मी व लू से बचाव, इस विषय पर डॉक्टर रघुवीर सिंह से की गई बातचीत।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर भेंटवार्ता एक किसान से। इसके अंतर्गत आज के किसान होंगे राजकुमार। ग्रामीण संसार में फोन इन कार्यक्रम बालक मंडली होगा शाम 7:00।

खेत खलिहान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर बाजरे की काश्त इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:25 पर श्रोता सुनेंगे हरिओम शरण के गाए हुए कुछ भजन।

पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनचाही गीत रात 10 बजे और एक फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9:15 पर। आपके अनुरोध पर ये कार्यक्रम दिन में 1:10 पर होगा और ये आधारित होगा श्रोताओं के पत्रों पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 9:00।

0: कहेंगे।
1: लू लगना या हीट वेव का जो डेफिनेशन है, आईएमडी और वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेफिनेशन के अनुसार, जिस एरिया का एवरेज टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से 4.62 लेकर के 6.4 तक बढ़ जाता है
0: जी,
1: कम से कम उसकी रीडिंग 2 दिन तक रहती है और 2 स्टेशन पर अलग अलग मिलती है, तो उसको हम हीट वेव कहते हैं। इसका जो मुख्य कारण होता है कि हमारा जो अपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें ज़्यादा हाई होने के कारण हमारी जो गर्म हवाएं हैं उसको प्रेशर लेकर के रीजन वाइज इफेक्टेड करता है। रीजन वाइज मैंने इसलिए कहा है क्योंकि हीट वेव की डेफिनेशन, जैसे कि हिली एरिया में
0: जी,
1: यह टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर हो जाए तो हम उस डेफिनेशन मानते हैं
0: जी।
1: अगर कोस्टल एरिया में आते हैं 37 में आते हैं, हमारा जो प्लेन एरिया है
0: जी
1: इसमें 40 डिग्री से ऊपर आता है तो हीट वेव में डेफिनेशन में आता है
0: जी। तो इसका शरीर पर क्या असर पड़ता है?
1: इसमें डायरेक्ट भी इफेक्ट डालता है और इससे होने वाले हमारे जो ग्रेडिंग के अनुसार हीट वेव का टेम्परेचर कितना है उसके अनुसार भी हमारे शरीर को ही प्रभावित करता है। ये सिर्फ मनुष्य को ही प्रभावित नहीं करता, जीव जंतु और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। अगर इसको साइन और सिम्टम का और ये पहचान के तौर पे देखें तो स्किन रैशेज हो जाती हैं,
0: चक्के पड़ जाते हैं,
1: हाँ चक्के पड़ जाते हैं
0: जी।
1: मरीज को नोजिया वोमिटिंग आ जाती है, पेशेंट का मुंह जो सो है प्यास ज़्यादा लगती है, सूख जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसको कन्फ्यूजन हो जाता है
0: जी,
1: पेशेंट ओरिएंटेड नहीं रहता,
0: भ्रम पैदा
1: हो जाता है
0: जी।
1: और अगर लेटर ऑन स्टेज में उसको कोई इंटरवेंशन नहीं की गई, पानी नहीं पिलाया गया, ठंड की जगह में नहीं रखा गया, हाइड्रेट नहीं किया गया
0: जी,
1: तो कन्फ्यूजन होकर के उसको सीजर दौरे भी आ सकते हैं, और फिर भी अगर उसको लेटर स्टेज में डेथ भी हो जाती है। क्योंकि आपको जैसे कि रिकॉर्ड के अनुसार 2015 मई में
0: जी
1: हमारे जो साउथ वेस्ट एरिया में लगभग ये काफ़ी सीवियर हो गया था और 2500 के आसपास डेथ भी हो गई थी
0: जी।
1: तो ये सिर्फ माइल्ड से लेकर के डेथ तक की प्रोसेस हो जाती है। तो इसकी आपने जो इसका चुना है कि सबसे फोकस तो यही है कि किसी व्यक्ति की डेथ ना हो
0: जी।
1: और इसकी जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, जो कि हमारे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जो हार्ट के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं और हमारे किडनी के मरीज हैं, वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं।
0: जानना चाहेंगे कि इस बढ़े हुए तापमान का हमारे शरीर पर क्या असर होता है, किस प्रकार से हमारा शरीर वो प्रतिक्रिया देता है?
1: प्रतिक्रिया में जैसे कि टेम्परेचर बढ़ेगा शरीर का
0: जी,
1: पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगेगी और स्वेटिंग भी कम हो जाती है,
0: पसीना
1: बहुत कम हो जाएंगे
0: जी,
1: और डिहाइड्रेटेड हो जाएगा उसमें,
0: निर्जलीकरण जिसको बोलते हैं,
1: वो उसकी उल्टी आ जाती है उसमें और रेसिप्रोकल या दुष्प्रभाव बढ़ जाता है
0: जी।
1: तो इस प्रकार से जो हमारे डायरेक्ट विजिबल हो जाते हैं और अदृश्य हमारे जो ऑर्गन है, हार्ट है, किडनी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको भी प्रभावित करता है ये
0: जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या सावधानी क्या रखनी चाहिए अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो?
1: सावधानी ये है कि हम जो बहुत डायरेक्ट ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे कि 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक, उसमें बहुत ही ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, और जब बाहर निकलें अपने शरीर को ढक करके निकले, छाता हो या फिर हमारे कोई गमछा हो, और साथ में पानी रखें। इसमें एक ये भी है, कई बार प्यास की वेट ना करें और पानी के साथ साथ में ORS है, नींबू पानी है, लस्सी है, शिकंजी है, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बिना प्यास भी उसको पीता रहना चाहिए, ताकि अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखे, अपने शरीर को ढक करके रखे, गॉगल्स लगाएं, कपड़ा रखाएं
0: जी।
1: और खास करके मजदूर होते हैं
0: जी,
1: वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करने की वजह से उनको ज़्यादा खतरा होता है।
0: इसके अलावा जो किसान भाई हैं उनका भी लामनी का काम है या आगे पौधे रोपाई करने का काम है, तो उनका भी खेत में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है।
1: हाँ, ये बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि उस समय हमें समय का सही तरह से चुनना चाहिए कि हम 11 बजे से या अर्ली मॉर्निंग
0: जी
1: अपना काम करें और लेट इवनिंग में काम करें तो उसे बेटर होता है। और ज़्यादा दिक्कत आती है तो अपने शरीर को हाइड्रेट करने के साथ में पानी रखें, और गमछा है, हमारी पगड़ी है, पहले कैप एट भी लगा सकते
0: जी,
1: हैं
0: जी,
1: टोपी, हाँ टोपी पहने
0: जी।
1: इस प्रकार से हमारी जो डायरेक्ट एक्सपोजर है शरीर को सन से, उसको अवॉइड करना चाहिए,
0: यानी कि सूर्य की किरण है वो सीधे हमारे शरीर पर ना पड़े।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी
0: जी।
1: तो इसके लिए हमें जो कपड़े हैं वो भी सिंथेटिक्स ना हों, कॉटन के हों, हल्के हों, और जैसे कि लाइट कलर के हों,
0: हल्के रंग के
1: हों, वो बढ़िया रहते हैं।

0: कि उसको रिफ्लेक्ट वापस जा करके सूर्य किरण रिफ्लेक्ट हो जाती है, अब्जॉर्ब नहीं होती।
1: जी
0: जैसे ब्लैक कलर है उसमें अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा,
1: उसमें
0: तो
1: ज़्यादा गर्मी
0: हाँ
1: महसूस
0: ज़्यादा
1: होती है।
0: गर्मी महसूस होएगी।
1: जी
0: तो ये सिंपल सी बातें हैं, उन सिंपल सी बातों को हम अपना करके अपने शरीर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर इस तरह की परिस्थिति किसी व्यक्ति के साथ हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो हमने जहाँ पर एक्सपोजर है उस एरिया से लेकर ठंड के एरिया में उसको पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए,
1: जहाँ पे छाया
0: जहाँ
1: हो।
0: छाया हो,
1: जी
0: शरीर को गीला करना चाहिए, पानी ठंडा भी ना भी हो, कपड़े समेत उसको वैसे गीला कर देने से उसके ऑपरेशन से कूलिंग हो जाती है, ठंडा हो
1: जी
0: तो वेर भी बढ़िया।
1: जी
0: और उसको जल्दी से जल्दी हम ORS का पानी पिलाएं, नींबू पानी, लस्सी, फ्रूट ज़्यादा दें। अगर फिर भी वो रिकवरी नहीं है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ही होती है, क्योंकि इसमें फिट्स आ जाते हैं
1: जी
0: और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, तो उसमें मोर्टिलिटी बढ़ जाती है।
1: यानी मृत्यु होने की संभावना बढ़
0: हाँ,
1: जाती
0: उस
1: है।
0: समय बढ़ जाती है, और ख़ास करके जो बच्चे हैं और ऑलरेडी पहले नॉन केस हैं, डायबिटीज़ के हैं, हार्ट अटैक के हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, तो इन मरीजों में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।
1: जी
0: तो ये जो साधारण सी जो बातें हैं, और ख़ास करके गर्मी के समय में बीमारियां भी बहुत हो जाती हैं, ख़राब पानी पीने से उसमें बीमारियों की संख्या के बढ़ जाने से आदमी बीमार भी बहुत हो जाते हैं। तो इसमें एक तो शरीर को अपने आप से बचाना है, दूसरा खाने पीने और पानी जो सेफ़ वाटर हो उसका सेवन करना है। सेफ़ वाटर बनाने के लिए सिंपल सी जो
1: विधि है।
0: विधि है
1: जी
0: उस पर फोकस करना चाहिए, कि पानी को उबाल लेना चाहिए, उसको एक गड्ढे में डाल करके क्लोरीन की टेबलेट 45 मिनट तक उसमें रख दें,
1: 45 मिनट तक।
0: 45 मिनट तक,
1: जी
0: तो वो पानी पिए, तो उस पर जो सेफ वाटर हो जाता है उसका ज़्यादा सेवन करें। बाहर में जो कई बारी जो बर्फ़ बनाते हैं ठंडा लेने के लिए, उसका प्रोसीजर हमें पता नहीं होता किस मेथड से बनाई, उसमें क्या क्या कैसा पानी लिया गया है,
1: जी
0: तो अवॉइड करें बर्फ़ खाना।
1: सब बच्चे तो
0: ये
1: बहुत
0: बहुत
1: इस तरह
0: सावधानी,
1: लालायित रहते
0: ये
1: हैं।
0: इसीलिए बहुत ज़रूरी है
1: जी
0: कि जो अगर मान लो जो चीज़ नुकसान करती है शरीर को, वो अपने टेस्ट के लिए नहीं करनी चाहिए।
1: जी
0: बच्चे को अवेयरनेस के द्वारा हम उसको रोक सकते हैं कि उसका जो पानी है वो अच्छा नहीं है, वो पानी ठीक नहीं है, तो हम बीमार हो सकते हैं। वाटर बोन डिजीज जो होती है उसमें पीलिया हो जाता है,
1: जी
0: मोतीजहरा हो जाता है, उल्टी दस्त हो जाती है, तो ये काफ़ी लेटर ऑन जा करके पेशेंट को मोर्टिलिटी को बढ़ाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, अब क्योंकि गर्मियों में बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं तो वो कई बार जोड़ तालाब है उसमें नहाने के लिए चले जाते हैं, तो एकदम से ठंडे पानी में से बाहर निकल के आते हैं, तो उसका भी कुछ असर हो सकता है?
0: उसमें यह है कि एक तो हमारे जो तालाब का जो पानी है
1: जी
0: वो काफ़ी गंदा होता है।
1: गर्मियों में वैसे भी कम
0: हाँ
1: पानी हो
0: हाँ
1: जाता
0: कम
1: है।
0: पानी हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो बच्चों को उससे बचा कर रखें।
1: जी
0: इसलिए क्योंकि एक तो गंदे पानी में नहाने से हमारी स्किन की डिजीज़ हो सकती है, दूसरा जो बच्चे होते हैं वो सावधानी बरते हैं, उसको मुंह के द्वारा बॉडी के अंदर भी चला जाता है,
1: जी
0: तीसरा वो पानी कान में भी चला जाता है, नाक के द्वारा आँखों में भी चला जाता है। तो जो बैक्टीरिया, जो वायरस उस गंदे पानी में है, वो एक सोर्स को आमंत्रित करता है हमारे शरीर को।
1: जी
0: तो बच्चों को अवेयर करो कि ये जो चीज़ें हैं खाने पीने की है, जो गंदा कंटेमिनेशन से जो हमारा पानी ख़राब हो रहा है उसको अवॉइड करोगे तो आप हेल्दी रहोगे।
1: जी
0: एक कहावत है कि आप अच्छा खाओगे, अच्छा खाना खाने के साथ साथ में और शुद्ध पानी पियोगे, तो
1: जी
0: इसमें 70-60% बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं।
1: जी
0: जो समस्याएं आती हैं उसको कम करने के लिए सरकार ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, CHC लेवल पर, PHC लेवल पर
1: जी
0: एक स्पेसिफाइड स्पेस बनाया हुआ है, कि वहाँ पर कोई ऐसे प्रकार का मरीज आता है तो उसको फर्स्ट एड और अच्छे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए।
1: जी डॉक्टर साहब, अपना जो ग्रामीण इलाकों में खान पान रहा है, लस्सी का है, राबड़ी का है, तो ये जो चीज़ें हैं इनसे कितना क्या बचाव आप मानते हैं?
0: ये बहुत ही अच्छी चीज़ें थी,
1: जी
0: हमारी जो राबड़ी है, लस्सी है,
1: दही
0: दूध है,
1: है।
0: दही है, ये
1: जी
0: बहुत हमारी जो कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छी सेहत के लिए है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें और बाहर जा रहे हैं तो अपने शरीर को ढके रखें, पानी का प्रयोग है वो करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ है वो लें, और अपने काम है वो दोपहर से पहले या दोपहर के बाद में निपटाएं,
0: हाँ जी,
1: तो जितना हम बचाव कर पाएंगे उतना ही हम बचे रहेंगे। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर राघवीर सांडेले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत जी, आपको धन्यवाद।
2: हमारी सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत

अभी आप सुन रहे थे अत्यधिक गर्मी व लू से बचाव, इस विषय पर डॉक्टर रघुवीर सिंह से की गई बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे थे संजय बाली। ये कार्यक्रम सुनवाया गया आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त गीता।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओं, आज है 3 जून और आज हम मना रहे हैं विश्व साइकिल दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह एक वैश्विक दिवस है जो कि साइकिल को परिवहन के एक विश्वसनीय, किफ़ायती, स्वच्छ और टिकाऊ साधन के रूप में मान्यता देता है। यह दिन स्वास्थ्य में सुधार, प्रदूषण कम करने और आवागमन को सुगम बनाने में साइकिल की भूमिका का जश्न मनाता है। साइकिल का डिज़ाइन श्रोताओं बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। यह लोगों को ईंधन के बिना कम दूरी तय करने में सहायता करती है, दैनिक व्यायाम में सहायक है और विभिन्न आयु वर्ग और आयु स्तर के लोगों के लिए एक सुलभ परिवहन विकल्प प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष इस दिन को एक थीम के तहत मनाया जाता है और वर्ष 2026 की थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना। यह विषय प्रदूषण, यातायात जाम, जलवायु परिवर्तन और जीवन शैली से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही दुनिया में साइकिल चलाने के पर्यावरणीय महत्व पर प्रकाश डालता है। यह थीम हमें याद दिलाती है कि साइकिल की हर सवारी एक स्वस्थ शरीर और एक स्वच्छ ग्रह में योगदान दे सकती है। इसके इतिहास पर गौर फरमाएं तो विश्व साइकिल दिवस का विचार समाजशास्त्र के प्रोफेसर और साइकिलिंग के समर्थक लेजेक सिबल्सकी द्वारा प्रचारित किया गया था। उन्होंने अपने छात्रों के साथ मिलकर एक ज़मीनी स्तर का अभियान शुरू किया ताकि संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर साइकिलों के महत्व को पहचानने में के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 2015 में साइकिल और उसके विकास पर उनके अकादमिक कार्य ने इस अभियान को गति देने में सहायता की। बाद में इस अभियान को वैश्विक गतिशीलता समर्थक और संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। 12 अप्रैल 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया और उन देशों द्वारा समर्थित था जो साइकिलिंग को सतत परिवहन, स्वस्थ और विकास के साधन के रूप में मान्यता देते हैं।

श्रोताओं, गीत से पहले हम बात कर रहे थे विश्व साइकिल दिवस के बारे में, और आपको बता दें कि साइकिल का आविष्कार वर्ष 1817 में जर्मनी में हुआ था। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी साइकिल इंडस्ट्री है। भारत

में साइकिल का आविष्कार का साइकिल का प्रचलन 1890 के बाद शुरू हुआ और दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल जो है वो नीदरलैंड में होता है। श्रोताओं, साइकिल चलाना एक कम ऊर्जा खपत वाला एरोबिक व्यायाम है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसकी तीव्रता भी अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हेल्दी और फिट रहने के लिए सिर्फ खाना पीना नहीं या लाइफस्टाइल ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट तक साइकिल चलाना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। साइकिल चलाना सिर्फ एक एक्टिविटी ही नहीं, बल्कि ये आपको बीमारियों से भी बचाती है और सालों साल तक एक्टिव रहने में भी आपकी सहायता करती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक साइकिल चलाना सिर्फ व्यायाम ही नहीं, इससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के फायदे होते हैं। साइकिल चलाने से मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, मानसिक शांति मिलती है और शरीर एक्टिव रहता है। श्रोताओं, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बहुत सारे फायदे हैं साइकिल चलाने के, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। रोज़ाना साइकिल चलाने से तनाव, चिंता, अकेलापन दूर होता है। ताज़ी हवा और प्रकृति के बीच रहना और शारीरिक गतिविधियों से मानसिक शांति हमें मिलती है। और इसके अलावा रोज़ाना 30 मिनट साइकिल चलाने से जो दिल का स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। साइकिलिंग चलाने से हार्ट गति, जो दिल की गति है वो बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो हमारा दिल है वो अच्छी तरह से काम करता है। रोज़ाना साइकिल चलाने से नींद भी अच्छी आती है। साइकिल चलाने से शरीर में हार्मोनल संतुलन स्थापित होता है, मेलाटोनिन का उत्पादन कंट्रोल होता है और इससे नींद जो है वो बेहतर बनती है, यानी कि अच्छी नींद हमें आती है। तो बहुत सारे फायदे हैं श्रोताओं साइकिल चलाने से। ये आपके शरीर को मानसिक और शरीर को स्वस्थ रखता है और इसके साथ साथ आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है। देखिए, अगर आपको पूर्णतः स्वस्थ रहना है तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों से स्वस्थ रहना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोता जो साइकिल चलाते हैं वो तो अच्छा ही है और जो नहीं चलाते वो भी आज से साइकिल चलाना ज़रूर शुरू कर देंगे।

सड़कों पे परेड ये फैशन की एक शक्ल है इनविटेशन की गत कुछ भी बनाओ नेशन की तुम जान हो उस जनरेशन की जो

श्रोताओं, जून का महीना है और बच्चों की गर्मी की छुट्टियां अब लगभग शुरू हो चुकी हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारी चीज़ों के लिए बच्चे प्लानिंग करते हैं, घर वाले भी उनका साथ देते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है इन दिनों में स्विमिंग पूल में जाने की योजना बनाते हैं। तो आप जहाँ पर भी जाएं, उस ऐसा कुछ करें कि आप जब वहाँ जाएं तो उसका पूरी तरह से आनंद यानी कि पूरी तरह से लुत्फ आप उठा सकें। और स्विमिंग पूल में जाने से पहले भी आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। जहाँ पर पानी का लेवल गहरा हो, ऐसी जगह पर ना जाए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और दूसरी बात, जब आप पूल में नहाने के लिए जाएं, उससे पहले सादे पानी से जो है नहा ज़रूर लें, क्योंकि शरीर पर जो पसीना या मैल इत्यादि होते हैं वो साफ़ हो जाएं और पूल का पानी जो है वो गंदा ना हो। और पूल के पानी में नहाने के बाद भी आप सादे पानी से स्नान ज़रूर करें, क्योंकि पूल के पानी में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, या क्लोरीन तो होती ही है, तो ये आपके शरीर के लिए, आपकी त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो पूल में नहाने के बाद आप जो है सिंपल पानी से नहाना ना भूलें। और श्रोताओं, इसके अलावा बहुत सारे जो परिवार हैं इन दिनों में घूमने की योजना भी बनाते हैं कि भाई हम किसी जगह पर घूमने जाएंगे या किसी ठंडे स्थल पर घूमने जाएंगे, किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा हम ज़रूर करेंगे। तो वहाँ पर भी आपको सावधानी रखनी है। देखिए, सबसे पहली बात कि आप जहाँ पर भी जाए अपने बजट के हिसाब से ही जाए, क्योंकि अगर बजट के हिसाब से आप कहीं जाने की योजना बनाते हैं तो इसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ेगा और ये आपकी यात्रा के आनंद में खलल डाल सकता है। और दूसरी बात कि अगर आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर घूमने जाते हैं तो वहाँ के सौंदर्य की सुरक्षा का आप जो दायित्व है वो आपका बनता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहाँ पर कुछ भी खाकर रैपर को इधर उधर डाल देते हैं, या कई बार किसी पैनी या नुकीली चीज़ से उन ऐतिहासिक स्मारकों पर अपना नाम कुरेदते हैं। ऐसा करके हम उनके सौंदर्यता को ख़राब कर देते हैं और एक अच्छे नागरिक होने का परिचय हम नहीं दे पाते। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। खुद भी इन बातों का ध्यान रखें और अपने बच्चों को भी इनके बारे में ज़रूर समझाएं। और इसके अलावा श्रोताओं, जब आप घूमने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले ही वहाँ के मौसम के बारे में, वहाँ आपको किस जगह पर ठहरना है, इसके बारे में आप जानकारी ज़रूर ले लें। टिकट को पहले से ही बुक करवा लें ताकि वहाँ जाने के बाद आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएँ हैं या जो भी हैं, आप कुछ दवाइयाँ अपने साथ, सामान्य सी दवाइयाँ जो हम अक्सर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो दवाइयाँ आप अपने साथ रख लें, क्योंकि भाई सफ़र का समय है, कोई भी जो है आपको दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा पानी की बोतल आप अपने साथ रख सकते हैं। और गर्मी का मौसम है इसलिए सूती और ढीले वस्त्रों का आप इस्तेमाल करें सफ़र के दौरान। और जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहाँ के मौसम के बारे में भी जानकारी ज़रूर ले लें कि वहाँ का मौसम कैसा है और आपको वहाँ पर किस तरह के कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो श्रोताओं, कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि आप कहीं पर भी जाएं, कभी भी जाएं, लेकिन सावधानी के साथ जाएं, सतर्कता के साथ जाएं।

और श्रोताओं, आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दीजिए इजाज़त कार्यक्रम को यहीं समेटने की। नमस्कार।

सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद 8:15 पर अंग्रेजी में होंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
6: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
7: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत।

0: हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई खरीदें।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी।

0: और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Venezuela's acting President Delcy Rodriguez to be on a 5-day visit to India beginning today. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman, elected President of 81st Session of UN General Assembly, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in third and final T20 international to seal 3-match series 2-1.

ತಂಬರ ಥರೀರದ ಉಡದ ಕರಿ ಆಲಬತ ಸುಣ ಲೋ ಬಾತ್.

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ओके।

ஓ

कदे ताले की चाबी कहते ओ कदे ताले की।

के दूत मेरा शर उठना कह शर्मा कह शर्मा।

नहीं कहने की बात कती ना या शर्माएगी। आज महल में

दरकागर में बढ़ जा मुझी मुदला पेश मुकदमा खोद भीत में अड़ जा और शर्मदार मानसी जत के मारे मर

मीठा बोल प्यारा चौपड़ खेल शराब पीवे मारी पास रह सुत दारा ओ सो सो मन के शलाबर थिरी सो सो मन के शलाबर थिरी।

आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम, जिसमें हमारे आज के कलाकार थे सुमेर सिंह आर्या। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब श्रोता सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए हुए गीत के साथ। देव कोहली के हैं बोल और संगीत राम लक्ष्मण का। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ हिना फिल्म का गीत, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम का गाया हुआ देव कोहली के हैं बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

अब सुनिए नदीम श्रवण के संगीत से सजे श्रीमान आशिक फिल्म के गीत को कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में।

कार्यक्रम में अब सुनिए उदित नारायण और सुजाता का गाया हुआ, समीर का लिखा और विद्यासागर के संगीत से सजा हुआ हलचल फिल्म का गीत।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत अमित कुमार और अलका याग्निक का गाया हुआ। फिल्म का नाम है नरसिम्हा।

ये है प्रेम दीवाने फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे हुए गीत के लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं दीवाना फिल्म का गीत, आवाज़ साधना सरगम और कुमार सानू की, समीर के हैं बोल और संगीत नदीम श्रवण का।

अब सुनिए दबंग 2 फिल्म के गीत को, राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ है, संगीत साजिद वाजिद का है।

दबंग 2 इस फिल्म के गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे। समाचार पहले हिंदी में होंगे और 10:05 पर अंग्रेजी में होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपये भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों का आपसी संपर्क बढ़ेगा और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को बधाई दी है। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, साथ ही उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30:20 हुए हैं। हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की, और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
3: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
3: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है, केवल 5% भाग ही रेतीला है।
3: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
3: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
3: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
3: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
3: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
3: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
3: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
2: जी।
3: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
2: जी।
3: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
2: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
3: जी।
2: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
3: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं
2: जी।
3: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
2: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
3: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
2: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
3: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
2: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
3: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
3: श्रोताओ, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
2: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
4: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
5: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो।
6: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
5: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
7: अरे वो देखो चिड़िया।
8: अरे वो देखो बंदर।
9: ओह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
10: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
11: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
12: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
13: क्या करेंगे?
14: देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
4: अचानक
12: ओ, ये तो रीच की आवाज है।
15: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
16: क्या करें, क्या करें? जल्दी सोचो क्या करें।
17: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
18: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
4: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
18: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
4: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
19: ओ, अब मैं क्या करूं?
4: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
19: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
4: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
19: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
4: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
19: बच गए, लगता है रीच चला गया।
4: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
18: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
4: और अपने साथी से जाकर पूछा,
18: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
4: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
19: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
4: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: अरे
5: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
5: हाँ?
6: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
7: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
4: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
8: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
9: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
8: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
10: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
8: आप तो काम करती है ना?
10: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
8: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
3: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
4: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
3: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
3: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
4: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
6: गौरा मा,
8: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
6: गौरा मा, वो लोग आ रहे हैं।
8: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
6: गौरा मा,
8: हाँ?
6: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
8: क्या?
6: हाँ गौरा मा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां, रस्सियां और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
8: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
10: बिल्कुल,
8: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
1: हाँ, हम सब तैयार हैं।
10: नहीं कटने देंगे।
6: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
3: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
8: ये है जंगल के उपकार,
1: मिट्टी पानी और बयान।
8: मिट्टी पानी और बयान,
1: जिंदा रहने के आधार।
4: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
8: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म
11: जानी चाहिए तुझे।
12: सुनो, आगे बढ़ो।
13: अरे कहाँ
12: से? 2 मिनट की बात में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। उठो शुरू, काट पे।
13: पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
11: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
14: नहीं लगाने देंगे
11: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
15: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
12: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
4: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
12: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
3: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
4: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
3: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
4: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
11: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
3: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
16: आप
14: आपने ये प्रायोजित कार्यक्रम सुना?

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा, अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
1: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल टीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
0: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार में

तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया। उन्होंने मोहन लाल वडौली की जगह ये अहम जिम्मेदारी ली है। इस नियुक्ति से पहले वो हरियाणा बीजेपी की प्रदेश महासचिव थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उधर पंजाब के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सरदार केवल सिंह ढिल्लों को भी आज उनका पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह समेत कई पदाधिकारी साथ में मौजूद रहे। आज विश्व साइकिल दिवस है। अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया ने देशवासियों को विश्व साइकिल दिवस की बधाई देते हुए युवा शक्ति से साइकिलिंग को अपनी रोजाना की आदत बनाने की अपील की है।
1: आज मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ। साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे, उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल डीजल आदि ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान है। उन्होंने आज सभी से साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान भी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति P.S. नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राज्य में प्रीपेड मीटरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रथम चरण में सरकारी कार्यालयों, सरकारी भवनों और सरकारी कर्मचारियों के परिसरों में इसे लागू किया जाए। इसके पश्चात 10 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं तथा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को इस प्रणाली से जोड़ा जाए। उन्होंने इस दिशा में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश और राज्यों में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के साथ साथ बिजली क्षेत्र में होने वाले घाटे को कम करना समय की आवश्यकता है। इसके लिए बिजली निगमों को नई तकनीकों को अपनाते हुए लक्ष्य आधारित योजनाओं एवं परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि बिजली एक आर्थिक संसाधन भी है, जिसके उत्पादन और वितरण में भी भारी लागत आती है। इसीलिए वितरण व्यवस्था को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री कल चंडीगढ़ में हरियाणा के बिजली निगमों तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा बिजली क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, किंतु राज्य को बिजली घाटे को शून्य करने की दिशा में और अधिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली बिलिंग और वास्तविक आपूर्ति के बीच के अंतर को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। हरियाणा में चालू वर्ष के दौरान 220,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से अब तक लगभग 86,000 सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल द्वारा कल चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की भी समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

राही बदल गई। इस फिल्म का गीत आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गाया हुआ सुना। गुलशन बाबरा के बोल थे, संगीता आरटी बर्मन का, पसंद आप सभी की। आप हैं कोपरगांव महाराष्ट्र से सुरेश मालोदे, वर्षा निवासा से आमोद लोखंडे, शारदा लोखंडे, सकारबरो कनाडा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, आकली दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा मुकेश और सरिता शर्मा है, भाणा ब्रह्मनान से मेघराज शर्मा, गौरव सौरभ विजय अजय जितेंद्र जोगेंद्र शर्मा, चौथीवा से आप हैं मांगेराम सुनील शुभम यश विनोद, चौखंडी बुंदेलखंड से सईदा टपरिया निकहत शहनवाज, राजकोट से नूर मोहम्मद लखाणी जुबैदा जीशान लखाणी, आनंद गुजरात से आशाबेन पटेल विशाखा पामेला पटेल, भीलड़ वापी गुजरात से कल्पना मदान झा मानव मयंक, कुदोपाली उड़ीसा से गिरधारी लाल विश्वकर्मा, सरस्वती देवी विहंगम विश्वकर्मा, कीर्तिनगर नई दिल्ली से सुशांत प्रिय झा निवेश नियति, भीलवाड़ा से गजेंद्र सिंह तोमर राजेंद्र वीरेंद्र, मधुबनी बिहार से एके झा दुर्गा प्रसाद सैनी आर एल चंद्रवंशी अमोल मानकर राजेश, मधुबनी बिहार से अरविंद गुड़िया भव्या और वाडीखाम गांव से अनंता वाढ़े रामेश्वर शुभम साक्षी और खुशी। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। सुनने वालों के नाम और फिल्म का नाम आपको बताएंगे गीत के बाद।

ये था समाधि फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ आपने सुनी। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत था आर डी बर्मन का। पसंद आप सभी की थी। आप हैं कला नौर से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा, नरवेल से पीसी नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रतिभा, इशप्रीत, हरिपाल कौर, नरेंद्र तनेजा, लोहगढ़ ठाकरावाला से स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर, शुभदीप, पत्रोड़ा से मंगल जनागल, रोशनी जनागल, अंकुर इंदु, सुनील, पिपरिया, कबीरधाम से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, अकोला से सुशीला मंदूरकर, सदानंद, गौरव, निशा रानी नागरीकर, नंदुरा तिरुपति नगर से संतोष वसाने, उषा ऋषिकेश, अनिकेत वसाने, लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश, समीर और राजकुमारी पटेल। अगला गीत प्यार छुपता नहीं फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, SH बिहारी ने लिखा है। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ें आप सुनेंगे। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और पसंद आप सभी की। आप हैं वाकोडी से उत्तम जमधाड़े, स्वराज, स्वरीत, पोपलवाड़, संघर्षा, संविधान, होंगड़े, हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा, हदगांव आष्टी से सुधाकर कामले, संदीप कामले, तालुका पूर्णा देगांव से सदाशिव थोरात, मोहला हिसार से राजकुमार, गीतामन, सानिया, सुभाष, उषा, राहुल, आरती, रोहित ढोचक, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, रहीम मुन्ना, दानिश, आसिफ शेख, सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मुस्कान, बाबूलाल चौधरी, निर्मल बाई, पांडु पिंडारे से बादल सिंह गिल, कमलेश, टीनू, नीरू, कृष, प्रीति, सिया, आर्या, मोनू, डॉक्टर अंकित और वानिका, भवानीगढ़ संगरूर से परमिंदर रंधावा, सरबजीत हरजोत, कुलदीप रंधावा, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, भोपालगढ़ से धर्मेंद्र छिप्पा, कपिल छिप्पा, पूजा परिहार, संभाजी नगर औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम, सदानंद विराज, अंशु मनोवी, खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता गौरव सैनी, मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, वजीर सोहेल, सैयद तहमूर, शमीर खान और सैयद अजलान। आप सभी के अनुरोध पर प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में गाया हुआ सुनवा रहे हैं।

ये था प्यार झुकता नहीं फिल्म का गीत, एस एच बिहारी का लिखा हुआ। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ें आपने सुनी। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत जवाब फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें आप सुनेंगे। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सभी की है। आप हैं धामणी मानोरा से तुलसीराम, माया डेरे संदो, संदेश, ध्रुव कुमार, ज्योतिगिरी, प्रज्वल, अनुत, आकाश, किशन वायले, नितिन खाड़े, शेखर सोनो ने, उमरखेड़ से रजाक खान, शबाना बेगम, जावेद खान, आसमा आसिया प्रवीण, कैथल से डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, गांव राजपुर सूरजपुर से खेलसाई मरकाम, नयन प्रकाश, शारदा सीताराम, सतबीर संतोषी, रूपमती, पुष्पम, कविता, आरती मरकाम, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, चाहत सादिया, कुरावली मेनपुरी से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना मोहम्मद कैफ, चिरमिरी कुरासिया कालरी छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ राम सहोदर, गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर तुषार, रिक्की शेथा, लुम्बनी अकोला से राहुल बंसोड़, सम्यक शरण, मीना बंसोड़। आप सभी की पसंद पर जवाब फिल्म का गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

जवाब फिल्म का गीत हमने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थी। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं खंडवा के विजय महोबिया, कविता विशाल विवेक, सोनू मोनू रानू अनाया सपना शिवी सलोनी, साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मेहता, महोबा से नरसिंह राजपूत शत्रुघ्न गौरव, धामणी मनोरा वाशिम से आप हैं आदेश किरण दादुल्या, गुलशन डेरे चंद्रकांत पाटिल, आकाश ढोले, तेजस प्रणीता, मंगेश पाटिल, अरुण कोल्हे पाटिल, परमेश्वर टिकाले, शब्बीर खाड़े, मनीगाछी जतू कबाट से विजय लाली, साफी आलम मिस्त्री, मोहम्मद वकील राही, फिरोज, नाज प्रवीण, शबाना रिजवान, हिना बेरडी से राजेश सोनी कंचन, गायत्री ढोमणे वैष्णवी, चंचल ढोमणे, अर्जुन गवनेकर, धीरज सब्बासेरे, कापशी कोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योतिताई, पवन कुमार, कैलाश राव, वंदनाताई बाकड़े, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, मोहम्मद रेहान, शमरीन, रियाज, रिफाकत, माहिरा नूर, इंदौर से वंदना मराठा, गणेश कार्तिक, परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता और नारायण खच्चे। आप सभी के लिए जाबाज फिल्म का गीत, किशोर कुमार और सपना अवस्थी की आवाज़ें आप सुनेंगे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, गीत लिखा है इंदीपर ने।

जांबाज फिल्म का ये गीत था, किशोर कुमार और सपना अवस्थी की आवाज़ें थी। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगला गीत आप सभी के लिए, आप है चांडूर बिस्वा से, नारायण भाऊ खड़ से, रक्षाताई पुणे से, पंकज वाड़ोदे आर्या आदि, शैलेश सोनम धनुषपुरी बेटी वाड़ोदे, जरूर वरुण से बाबा साहेब, मीनाक्षी चरपे चंद्रप्रभा वाड़ोदे, रजनी कानीरे कार्तिक युवराज, वरुण जौलका से महेंद्र सरकरे, विजया मिलिंद सरकरे, न्यूमुल्तानगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि अनीता खुराना, राजीव ढींगरा कन्हैयालाल, शेरगढ़ मलोट से बलराज राम कालवा, भोलाराम लक्ष्मी बेबी, कुदरत मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह हरप्रीत शिवराजमान, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा, पिरदा कुरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार पुष्पलता राधा साहू, बागपत से एहसान अली, दिल्ली से डॉक्टर सोनम अदीबा, बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून राज अंसारी, आसमा खातून गुलफराज भागलपुरी, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और आसमा नास। हमारी तुम्हारी फिल्म का गीत आप सभी ने सुनना चाहा है, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाज़ें हैं। योगेश ने इस गीत को लिखा है, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: हमारे तुम्हारे फिल्म का ये गीत था। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाज़ें थी। योगेश का गीत, संगीत था राहुल देव बर्मन का। अगला गीत आपको सुनवाते हैं घरौंदा फिल्म से, भूपेंद्र सिंह और रूना लैला ने गाया है। जयदेव का संगीत है, गीत गुलजार का, पसंद आप सभी की। आप हैं बेमितरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, हिसार से राजेंद्र सैनी, राहुल सैनी, अमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुस्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज भोविक, भड़भूंजी आगर से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्याम बाबू, भावना, मधुबाला, मिलन, उमंग, आयुष, ओम प्रकाश, चटडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, चरखी दात्री से जगनेश संगवान, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन, किरण, जग्गी दुआ, प्रेमलता, सुनीता शर्मा, लोहारू से बिल्लू चिंडालिया, लक्ष्मी, सुरेंद्र बरखा, योगेंद्र, नरेंद्र चिंडालिया, गुंडी मानोरा, वाशिम से वच्छला भाई, खिराड़े चंदाबाई नगराले, सोमठाणा मानोरा से विशाल, ललिता पायल, आरुष कवाणे, तुलसीराम कवाणे, तुकाई राम, नीलू राउत, शेखर पीयूष, रहमानिया मानोरा से संजीदा बानो खान, साइमा खान, बुशरा खान, शब्बीर भाई, गोविंदपुरा सीकर से दातार, जनकपुरी से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डेकेस्ट्रो, सिरसिला चूरू से संदीप सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक सोनगरा, पदमपुर श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति भूमिका, गिरिडीह झारखंड से आप हैं बाबू अहद शहनवाज और इनके साथी। आप सभी के लिए घरौंदा फिल्म का गीत भूपेंद्र सिंह और रूना लैला की आवाज़ें हैं। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
1: दो दीवाने शहर में।

ये था घरौंदा फिल्म का गीत, भूपेंद्र सिंह और रूना लैला की आवाज़ें थी। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना आपको सुनवाते हैं अपने इन सुनने वालों की पसंद का। आप हैं समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति गुप्ता, राधे दीपक, अंकुर राघव गुप्ता, कर्मपुरा नई दिल्ली से कविता गौरव मानसी, अनिल मदान, फूल चिंचोली पंढरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया सुबहान, समीर सलमा मुमताज, दिलशाद नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी, बादशाह मुलानी, हरगोविंद नगर नवाशहर से सुरेंद्र संधु, अनीता रोहित, रितेश प्रीतिशा संधु और मैक्स संधु, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी, शेरड़ा हनुमानगढ़ से मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला लीलाधर शर्मा, वर्णा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान, इंदूरकर तेजस्वनी चौहान, माई इंदूरकर शौर्या श्रेयस, अंकिता अनिकेत चौहान, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली सर्वद सानवी, खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु मुकेश जगताप, सनावत से किशोर सांबले रेखा सांबले हिमांशु अनुराग सुलोचना चारुवी प्रणव सांबले, दत्रेंगी से हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा का खत है आप सभी के लिए। दूसरा आदमी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, संगीत है राजेश रोशन का, आइए सुनते हैं।

0: that adopting cycling as a regular habit can encourage a balanced and disciplined lifestyle while also supporting environmental sustainability and cleaner mobility. He added that cycling not only helps individuals maintain physical and mental well-being, but also contributes towards building a healthier and greener nation.
1: Cycling keeps us fit, energizes the body and improves mental health. The more we use the cycle, the less pollution there will be and the country will benefit from the saving of petrol and diesel. In this era of global challenges, Prime Minister Narendra Modi has also urged the people of the country to reduce their dependence on petrol and diesel vehicles. In this regard, cycling can become an effective and positive solution.
0: In Mizoram, Union Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan, has called upon the people to actively participate in the nation-building process and contribute towards the vision of a developed India by 2047 under the Viksit Bharat Initiative. During an interaction with government officials at Kolasib district, the minister emphasized that the central government places high priority on the development of the northeast region. Prime Minister Narendra Modi today shared an article authored by Union Minister Chirag Paswan highlighting the unlocking of new opportunities in Ladakh. In a social media post, the Prime Minister noted that a berry native to Ladakh is scripting a story of innovation and opportunity. He observed that the article presents a compelling reflection on how entrepreneurship and value addition are opening new avenues of prosperity in Ladakh. The RBI, Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee, began its three-day policy meeting in Mumbai today, with experts widely expecting the central bank to maintain the status quo on interest rates amid volatile global conditions driven by the ongoing tensions in West Asia. The policy decision will be announced on Friday. The June review comes amid sustained geopolitical tensions and volatile global crude oil and gas prices, which have complicated the outlook. Debunking reports of gold sales, the Reserve Bank of India today said there has been no change in its physical gold stock, which remains steady at 880.52 tons. The clarification comes after reports suggested that the central bank may have sold gold worth approximately $12 billion to shield its foreign exchange reserves from the impact of the ongoing conflict in West Asia. The United Nations Weather Agency has warned that a moderate to possibly strong El Nino is likely to develop in the coming months, raising concerns over higher global temperatures and more extreme weather events. According to the World Meteorological Organization, warming sea surface temperatures in the central and eastern Pacific Ocean are driving the phenomenon. The agency has forecast above average temperatures across most parts of the world from June to August and said El Nino conditions are likely to persist until November. The IMD has forecast hot and humid weather over parts of the northeastern region and Odisha, Konkan, Goa and sub-Himalayan West Bengal today. The Met Department has also predicted thunder squall conditions over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Telangana for today. In Indonesia Open Badminton, H.S. Pranoy will face Ireland's Nat Nguyen and Ayush Shetty will meet China's Wang Hongyang in the men's singles this afternoon. In men's doubles, pair of Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty suffered a setback after losing to Malaysia's Kai Shing Tung and Aaron Thai by 6-11 in their match today. Benchmark domestic equity indices were trading over 0.5% lower in the afternoon trade today amid geopolitical jitters. The Sensex lost 524 points to 74,125, while the Nifty fell 147 points to 23,336 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 21 people killed in a massive fire at a hotel in Delhi's Malviya Nagar. Prime Minister Narendra Modi expresses grief, announces an ex gratia of 2 lakh rupees to next of kin of each deceased. Trinamool Congress faces turmoil as expelled MLA Ritabrata Banerjee claims support of nearly 60 MLAs in West Bengal Assembly. Supreme Court forms high-powered expert panel to re-examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
4: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
5: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
2: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के

0: विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में 2 पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय

0: करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचा इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
1: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम।

0: भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम सुन वाले सारे वन भाइयों ने अशोक भाई ही राम राम। भाइयों आज जिक्र करांगे बाजरे की काश्त। पहले तो भाइयों इसके बारे में ये देखना कि जो इसका बिजाई का समय है ना, वो अवश्य तो 1 जुलाई से और 15 जुलाई तक है, ये सिंचित इलाकों में। लेकिन बरानी इलाकों में जो ही मान लिया बेमौसमी बरसात आ जाए, उसी टाइम पर हमने इसकी बिजाई कर देनी चाहिए। सबसे बढ़िया ये है, इसकी उन्नत किस्में बता दें आपने, 3 तरह की इसमें किस्में हैं। एक तो संकर किस्में हैं, एक संशोधित किस्में हैं और एक मिश्रित किस्में हैं। तो भाई जो सी लगाना चाहो वो ले लें। अलग अलग बता दें आपने, जो संकर किस्में हैं उनमें है HHB 50 60 67, ये 3 किस्में। संशोधित किस्मों में इसमें कई किस्में हैं, HHB 94 117, HHB 146, 197, 216, HHB 223, 226, 234, 272, HHB 299 और 311, ये संशोधित किस्में हैं। और मिश्रित किस्में इसमें 2 हैं, HC 10 और HC 20, इनमें से कोई सी एक आप किस्म ले लो और उसकी बिजाई कर लो। बीज की मात्रा जहाँ तक है, इसमें हमने बीज लेना है 1.5 से 2 किलो बीज लेना। लाइन में बिजाई करनी है, लाइन तो लाइन का फासला या खूट तो खूट का फासला हमने 1.5 फिट का रखना है। इस तरह हमने अपनी इसकी बिजाई करनी है। और हाँ, इसमें जो बरानी इलाके हैं उसमें खाद की बात है भाइयों, इसमें 35 किलो तो यूरिया लेना है और 50 किलोग्राम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट लेना है और 10 किलोग्राम जिंक लेकर हमने इसकी बिजाई कर देनी है। और जो सिंचित इलाके हैं, सिंचित इलाके हम जिस तरह बताया था भाई, 1 से लेकर 15 जुलाई तक हमने इसकी बिजाई करनी है। और इसमें हमने लेना है भाई जो 55 किलो तो यूरिया लेना है और 150 किलोग्राम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। और हमने इसमें नाइट्रोजन और जो यूरिया है 55 किलोग्राम और जो सिंगल सुपर फास्फेट्स है और दूसरा जिंक है, सारे खाद तो बिजाई के समय दे देने हैं। और 2 किस्तें इसकी अलग से हमने रख लेनी है यूरिया की, एक तो जब हमें पौधे छटाई करा उस टाइम पर बिरला करा और दूसरा जब सट्टे आने लग जाए उस टाइम पर, यानी 2 बार ऊपर इसकी हमने यूरिया का छीटा देना है। तो इस प्रकार हमने करना है। और बात इसमें यह भाई, अच्छी तरह जब मान लें सिंचित इलाके में अच्छा पड़ेवा करने और बा करने, अच्छी तरह जमीन संवार कर फिर पड़ेवा करके उसके बाद हर बाई पर अपना मैज पट्टा सुहागा मारने ताकि खेत में नमी बनी रहे और फिर उसके बाद उसकी बिजाई करें। बिजाई का ये ध्यान रखें 2 सेंटीमीटर तक नीचे ना जा बीज और ना ऊपर, यानी 2 सेंटीमीटर के इसमें गहराई में हमने इसके बीज छोड़ना है। और बात इसमें और भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आज अपने के 2 गाना सुनवाओगे, गायक कलाकार रहेंगे रणबीर सिंह और पासी नैयर।

भाई हम दो गाना सुने, गायक कलाकार थे रणवीर सिंह और पासी नैयर, और जिक्र कर रहे थे बाजरे की कास्ट का। तो भाई इसमें जिस तरह बीज बताया कि वह 1.5 से 2 किलो बीज लाकर किस्म में बता दी थी इसमें खाद क्या होता है। हाँ एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें, बीज का उपचार जरूर कर ले। इसके लिए अपना 10 किलो पानी, 10 लीटर पानी और 1 किलो उसमें नमक डाल दें, और अपना जो बीज है ये जिस तरह बताया कि वह 1.5 से 2 किलो बीज है बाजरे का कर ले, और उसने कम से कम 2-3 बार इलाज उसमें अच्छी तरह वो कर दें, और जो भी मतलब वो होंगे बीज खराब बीज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे तैर जाएंगे, और बाकी बीज नीचे आए ऊपर आना तार के एक तरफ डाल दें, और फिर उसके बाद उसने जो बीज रह जाएगा नीचे बैठा है उसने कम से कम 4-5 बार जरूर दो, क्योंकि अगर जब नमक की चास रहेगी उसके ऊपर तो फिर वो बीज जमाव नहीं देगा। तो इस और हमने जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि बीज का उपचार करेंगे तो उसमें बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपने फिर मौसम शुद्ध ये बीज आ जाएगा, साफ सुथरा बीज आ जाएगा। फिर हमने जो बीज का उपचार करना है इसमें जो 4 ग्राम थायराम है या मेटालेसिक्स है ये ले सकें, ये 6 ग्राम रहेगी। जो थायराम है वो तो 4 लेनी है, मेटालेसिस है या 6 ग्राम रहेगी। इसका सूखा उपचार करना है, या तो कोई मटका ले लें या फिर कोई ड्रम ले लें, उसके अंदर बीज डाल के अंदर फिर या 4 ग्राम जो थायराम दवाई या डाल के अंदर उसने ऊपर पॉलीथीन बांध के ना अच्छा कई बार उसने हरा डला ले ताकि सारे उसके दाना के बीज के लग जाए जो या दवाई, और फिर उसके बाद हम इसकी बिजाई कर देनी है। हाँ एक चीज़ का जरूर ध्यान रखो भैया, जो खाद बताया खाद में ना हमने जिंक जरूर डाली, इस तरह बताया कि बच्चा कुछ भी हो कोई भी फसल हमने लेनी है साल में एक बार तो हमने जिंक जरूर डालना चाहिए। अब तो वैज्ञानिक बल्कि ये कहने लगे कि भाई कम से कम हमने हर फसल पर डाल देना चाहिए, ये 10 किलो की थैली है आपने 10 किलो की थैली हमने जरूर से जरूर उसमें कर देनी चाहिए। हाँ कई बार फिर ये होता है जो बीज ज़्यादा हो जाते हैं उनका जो विरला करना होता है छटाई करनी, कई जगह ज़्यादा जमा हो जाए तो वहाँ से उखाड़ के मैं और दूसरी जगह उसके जिस तरह मैं दाना पे लगाऊँ इस प्रकार हमने उसमें लगा दें, जो जगह खाली है खाली जगह उसमें लगा जा सके, और जो ज़्यादा है जित घर के वहाँ से उखाड़ के और या बिर के इसमें या शा कर लें, और फिर उसके बाद उसमें पानी लगा दें बढ़िया, जब बरसात के मौसम में कराया जाए तो और भी बढ़िया है। और ये खास करें जो सिंचित इलाके हैं उन इलाके में ज़्यादातर, और करतौन बरानी इलाके में भी चाहिए हमें हर जगह करने के, यानी जब बरसात का मौसम हो उस टाइम पर बरानी इलाके में भी हमें कर लेना चाहिए, ये ध्यान रखें इसमें। और फिर ये है कि इसमें जो सिंचित इलाके में है, सिंचित इलाके में जिस तरह बताया खाद है अलग अलग कर रखना है अपने, और बाकी तो अपनी जो किस्मा का ध्यान है ना किस्मा का ध्यान जरूर रखें, और एक ये ध्यान रखें कि जो बीज की जो बिजाई है वह लाइन ना काटी, लाइन तो लाइन का फसला या कूट तो कूट का फसला जिस तरह बताया था आपने 1.5 फिट रखना है उसमें, उसे मतलब कम नहीं रखना है क्योंकि फिर आगे जाकर जो पैदावार है ना पैदावार में कमी पड़ी, तो इस ओर हमें जरूर ध्यान दें, और अपना बीज भरोसे जगाते रहिए और अच्छा रहेगा। और बात यह है जो संकर बीज है, संकर बीज का तो भैया जिस तरह आपने पता भी है कि वो उसका अपने घर का बीज नहीं हर बार नया लेना पड़ता है, तो ये आप जरूर देखें बीज हमें 1.5 से 2 किलो ही लेना है, और इस ओर जरूर ध्यान रखेंगे। और भाई कार्यक्रम का समय हो रहा है, सारे बड़े भैया ने राम राम।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
1: तो श्रोताओं, बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर, जिसका शीर्षक है छोटी उम्र बड़ी जिंदगी। श्रोताओं, भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ सुधर रही है, लेकिन कई गृहिणी महिलाओं को आज भी घरेलू हिंसा, पति की मारपीट, सास ससुर के ताने सुनने पड़ते हैं। महिलाओं की इस स्थिति के पीछे एक कारण उनकी कमजोरी या चुप्पी भी होती है। महिलाओं को उनके साथ हो रही जातियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज की कहानी नीतू ने भी एक समय पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी और दूसरी महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनी। घर के कामकाज में कोई गलती होने, दहेज या पति को खुश ना कर पाने पर मार खाने वाली हर महिलाओं को नीतू की कहानी जरूर सुननी चाहिए। नीतू एक अच्छे परिवार में पली बड़ी लड़की थी और नीतू ने अपनी स्नातक ग्रेजुएशन की परीक्षा पूर्ण कर कंप्यूटर का कोर्स किया था और साथ ही वह जॉब भी करना चाहती थी। लेकिन समय रहते एक अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया तो नीतू के परिवार ने नीतू का विवाह करवा दिया। नीतू के विवाह में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बरातियों के स्वागत से लेकर दहेज, विदाई और नकद, सभी चीजों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। नीतू की विदाई के बाद कुछ सालों तक सब कुछ सही चल रहा था। उसका पति अमन भी उसे सब प्रेम रखता था। बस कमी थी तो नीतू के सपने पूरे होने की। नीतू शादी से पहले से ही काम करना चाहती थी, लेकिन अच्छे रिश्ते के चक्कर में उसे बाहर काम करने का समय ही नहीं मिला। शादी के दौरान नीतू के बाहर काम करने की इच्छा भी जताई, लेकिन उस समय किए वादे को अमन अब नकारने लगा। खुशहाल जिंदगी नीतू की नरक की जिंदगी में बदल गई। शादी के कुछ सालों तक तो सब कुछ सही चलता रहा। इस दौरान नीतू ने एक बेटी को भी जन्म दिया, लेकिन अब
2: नीतू, ये क्या आज फिर से आलू बैंगन बनाए? तुम्हें पता है ना मुझे आलू बैंगन पसंद नहीं।
3: पर मैंने तो आपसे पूछ के ही बनाया था ना।
2: वो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, पर तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए मेरी पसंद ना पसंद का।
3: पर आलू के पराठे तो आपको पसंद हैं, पर ये
2: तू इधर आ, तुझे बस मुझे नीचे दिखाने का मौका चाहिए होता है। ले, अब सब ध्यान रहेगा और ये खाना भी खुद ही खाना।
3: सब काम पूछ के करती हूँ, फिर भी हर रोज मुझे मारने का कारण मिल ही जाता है इनको। अरे गुड्डी बेटा, अंदर जा, ये ठीक है, बस पैर फिसल गया मेरा, तू बस अंदर जा बेटा।
4: ये क्या फिर तुम दोनों का चालू हो गया? हे प्रभु, परमेश्वर ही बचाए मुझे इस कलेश से। तुम्हारा रोना धोना हो जाए तो खाना लगा देना मेरा।
3: जी माँ, बस अभी लगा देती हूँ।
2: जा रहा हूँ माँ, खाना आज बाहर ही खा लूंगा।
4: ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ये लड़की नहीं सुधरने वाली। अरे पति पर भी ध्यान दिया कर, सारा दिन गुड्डी के पीछे लगी रहती है। देखा, मेरा बेटा अमन आज फिर भूखा ही चला गया।
3: पर माँ जी, मैं तो बस।
4: चुप कर, अब मुझसे जबान लड़ाएगी? जा काम कर अपना।
5: क्या बात है कमला, आजकल रोज घर में रोने धोने की आवाज़ें आती हैं। बेटे बहू सही तो है ना?
4: अरे क्या बताऊं गीता बहन, ये रोज रोज के कलेश से तो मैं भी दुखी हो गई हूँ। अब समझ नहीं आता कि इस बहू का क्या करूं।
5: ऐसा भी क्या कर दिया बहू ने जो रोज का रोना धोना हो?
4: गीता, तू तो जानती ही है, अमन के पिता के जाने के बाद से ही अमन पर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आजकल थोड़ा गुस्सा ज्यादा करने लगा है, पर
5: क्या,
4: बहू को भी तो ध्यान रखना चाहिए ना।
5: किस बात का?
4: अरे अमन के स्वभाव का।
5: पर इसमें बहू क्या देखे?
4: अरे अब आज ही की बात ले ले, बहू ने अमन से पूछा कि खाने में क्या बनाऊं, लेकिन मूड सही ना होने के कारण खाना देखते ही अमन गुस्सा करने लगा और इसी गुस्से में बहू पर हाथ उठ गया।
5: पर इसमें गलती तो अमन की है ना?
4: भला इसमें वो भी क्या करता,
5: उसे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए।
4: चलो छोड़ो, हम भी कहां इसमें उलझ गए। सर्दी हो गई है, थोड़ी चाय बनवाती हूँ।
5: हाँ ठीक है।
4: बहू जरा दो कप चाय ले आना, पड़ोस वाली गीता आंटी आई हैं।
3: जी माँ जी, लाई।

0: अरे वाह बहू, चाय तो तुमने बहुत बढ़िया बनाई है।
1: जी बस शुक्रिया।
0: सुना है तूने स्नातक पढ़ रखा है, तो कुछ करती क्यों नहीं? यूं ही घर में रहकर पढ़ाई बर्बाद करनी है क्या?
2: अरे अरे, ये क्या बोल रही है तू गीता बहन? ये बाहर काम करेगी तो घर कौन संभालेगा?
0: पढ़ी लिखी बहू मिली है कमला, बाहर काम करेगी तो चार पैसा घर ही में ही आएगा।
2: पर चूल्हा चौका और गुड्डी?
0: अरे कमला, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कभी चूल्हा चौके में हाथ ही नहीं दिया हो। चार पैसे लाएगी तो अमन के सर का बोझ कम हो जाएगा और घर में शांति भी रहेगी।
2: पर गुड्डी को तो अपनी माँ ही चाहिए बस।
0: धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी, और 4 साल की तो हो ही गई, अब स्कूल में दाखिला करवा दो, खुद ब खुद व्यस्त रहेगी।
2: कह तो सही रही है तू गीता, पर
0: क्या?
2: मुझे नहीं लगता अमन मानेगा।
0: देख ये तो तुम्हारे ऊपर ही है, मैं चलती हूँ, देख लेना, और बहू तू भी चल। कमला चलती हूँ मैं।
2: अरे आ गया बेटा।
3: हाँ माँ।
2: वो मैं सोच रही थी।
3: क्या सोच रही थी माँ?
2: चल छोड़, तू खाना खा पी ले पहले, फिर तसल्ली से बात करेंगे।
3: ठीक है माँ, मैं आता हूँ फिर।
4: माँ जी, आपने उनको कहा या नहीं?
2: मुझे लग रहा है वो नहीं मानेगा, इसलिए।
4: आप रहने दो, मैं ही बात करती हूँ।
2: हाँ तू ही देख ले, बस जरा मूड देखकर बात करना, मुझे सुबह की तरह कलेश नहीं चाहिए फिर से।
4: ठीक है।
2: और सुन, गुड्डी सो जाए फिर ही बात करना, मैं अपने पास सुला लूंगी उसे आज।
4: ठीक है।
5: आप फ्री हो गए? आप आराम करो, मैं रसोई में थोड़ा काम बाकी है, उसे समेट कर आती हूँ।
3: हाँ माँ, ये क्या खुसर फुसर चल रही है?
2: अरे कुछ नहीं, तू आराम कर।
3: ठीक है माँ।
4: सुनो जी, सो गए क्या आप?
3: हाँ, कुछ काम है तो बोलो।
4: नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि घर का काम जल्दी खत्म हो जाता है तो सारा दिन यूं ही घर में बैठी रहती हूँ, सोचा फिर से पढ़ाना चालू कर दूं।
3: तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
4: क्यों, क्या हुआ? मैं तो बस।
3: फालतू दिमाग मत लगाओ, घर पर ध्यान दो बस, और मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ।
2: क्या हुआ, बोल दिया अमन को?
4: नहीं, वो मना कर दिए, कहा सिर्फ घर पर ध्यान दो।
2: एक बात बोलूं बहू, एक औरत को खुद की मदद खुद ही करनी होती है, और अब ये तुझे देखना है कि तू आगे क्या करना चाहती है। हमारी तो कट गई बेटा, अब तेरा भविष्य तेरे ही हाथ में है।
4: सही बोल रही हो आप, मैं आज ही बात करती हूँ। अरे अरे, आप काम के लिए निकल रहे हैं?
3: हाँ बोलो।
4: वो मैं सोच रही थी पढ़ाने के लिए स्कूल में आज ही बात कर रहा हूँ।
3: तुम्हें समझाया था ना कि घर पर ध्यान दो।
4: लेकिन इसमें हर्ज क्या है?
3: लगता है तुम नहीं समझोगी।
4: बस बहुत हुआ, मैं नहीं बोलती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, बस आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए चुप रहती हूँ, नहीं तो ये रोज रोज मार खाना, हर समय चुप रहना मेरी फितरत नहीं है। शादी से पहले भी मैं काम करती थी, और आपको कहा भी था कि शादी के बाद में भी करूँगी, पर
3: क्या? बोलो बोलो।
4: मुझे लगता है हमारे रिश्ते को थोड़ा समय देना पड़ेगा, तब शायद ये सब बातें जो आपने कही थी ना, उनका अर्थ आपको समझ आएगा।
3: क्या मतलब?
4: कि मैं पढ़ाने का काम फिर से शुरू करने जा रही हूँ, और कुछ समय के लिए मैं अपनी मम्मी के यहाँ रहने जा रही हूँ। जब आपका गुस्सा शांत हो जाए ना, तो आ जाना मुझसे मिलने और साथ ले आना मुझे।
3: ये क्या पागलपन है नीतू, घर कौन संभालेगा?
4: बहुत हुआ अब। माँ, आपको कभी भी कोई भी बात की जरूरत हो आप मुझे फोन कर लेना।
2: ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना।
4: और माँ, आपने कहा था ना
5: कि एक औरत ही खुद की मदद कर सकती है, तो ये पहल मैंने आज से ही कर दी। वैसे भी तो आस पड़ोस के लोगों को मेरी हालत का अंदाजा हो गया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी आगे की जिंदगी भी ऐसे ही गुजरे। आप अपना ध्यान रखना माँ, मैं चलती हूँ।
2: ठीक है बेटा, खुश रहना।
6: समय बीतता गया। कुछ ही साल में नीतू ने टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल के पद को प्राप्त किया। कुछ महीनों में ही अमन को भी समझ आ गया। वो अपनी गलती मानकर नीतू को अपने साथ घर ले गया था और कुछ ही महीने हुए नीतू ने खुद का स्कूल भी खोल लिया। आज नीतू ने एक औरत होकर सबसे पहले खुद की मदद की और माँ की दी हुई सीख को अपनाया और अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाया। हमारे देश में घरेलू हिंसा आम बात है और गांव क्षेत्र में तो बहू को कब्जे में रखने का एक तरीका भी माना जाता है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, एक औरत आज भी उतनी ही संवेदनशील होती है जितनी वो कल थी और आने वाले कल होगी। लेकिन एक सीख हमेशा याद रखना कि पहल हमें खुद ही करनी होगी। हमें ध्यान रखना है कि हमारे आसपास अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो उन्हें सिखाएं कि पहल उनकी हो।

0: तो दोस्तों, हमारे कुछ श्रोता हैं जो निरंतर हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और फोन कॉल के जरिए हमसे बातचीत करते हैं। आज उनके नाम हम आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे। सीतापुर यूपी से राम नरेश, लखनऊ यूपी से विजय कुमार मिश्रा, औरंगाबाद बिहार से देवनंदन जी, बराइच यूपी से शहजाद अली और उनकी पत्नी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए और लगातार हमसे बातचीत करके हमें प्रोत्साहित करने के लिए।
1: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 262.4 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर DTH और न्यूज़ सोने AIR पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। FM बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर DTH और न्यूज़ ऑन AIR पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

मिडन वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम की 5:30 और 10 सेकेंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा संसार।

आज का कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आप सभी की साथी याचना। और साथियों, आज हम सबसे पहले बात करें कि आज की दुनिया में जहां मोटर गाड़ियां, वायुयान और तीव्रगामी वाहन मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं, वहीं एक साधारण सी दो पहियों वाली सवारी साइकिल भी आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। साइकिल न केवल यातायात का साधन है, बल्कि यह स्वास्थ्य, पर्यावरण और समानता का प्रतीक भी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में 12 अप्रैल को एक प्रस्ताव पारित कर 3 जून यानी कि आज के दिन इसको विश्व साइकिल दिवस घोषित किया। यह निर्णय पोलिश अमेरिकन प्रोफेसर लेजिक सिबिल्सकी के प्रयासों का परिणाम था। इसके इतिहास की बात करें और या फिर इसके उद्देश्य की बात करें तो इस दिन का उद्देश्य साइकिल को विशिष्टता, बहुमुखी प्रतिभा और दीर्घकालीन उपयोगिता को उजागर करना है। और यहीं पर देखें तो साथियों, स्वास्थ्य के लिहाज से साइकिल चलाना अपने आप में एक संपूर्ण और बेहतरीन व्यायाम है। और आज की जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी और गतिहीन जीवन शैली के कारण लोग जो है मोटापा, मधुमेह और तनाव, इसके अलावा दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और अगर देखें तो इनसे बचने के लिए हमें रोज़ाना साइकिल चलाने से जो है हमारे शरीर का रक्त संचार है वो बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और खुली हवा में साइकिल चलाने से न केवल जो आपकी शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए साइकिल को अपनाना पर्यावरण संरक्षण में हमारी तरफ से जो है एक अहम कदम होगा। और इसीलिए देखें तो हम यह दिवस केवल एक दिन उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि यह एक स्वस्थ और सतत जीवन शैली अपनाने का संदेश है। और बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आगे, आपको सुनवा देते हैं एक गीत जो रहेगा फिल्म हाईवे से। इसको गाया है AR रहमान ने, बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है AR रहमान ने। आइए साथियों, सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये गीत जो था फिल्म हाईवे से। इसको जो गाया था वो गाया था ए आर रहमान ने, इसके बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और इसको संगीत दिया था ए आर रहमान ने। और बढ़ते हमारे कार्यक्रम में आगे, और आप सब जानते हैं कि आज बुधवार है और बुधवार के दिन होता है हमारा कार्यक्रम करियर काउंसलिंग। तो आज के करियर काउंसलिंग में जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा नृत्य के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, जो एक पुनः प्रसारित बातचीत है। और इसमें जो विशेषज्ञ हैं वो रहेंगी डॉक्टर कविता सैनी, इनसे बात की है हमारे यज्ञदत्त मिश्र ने। आइए साथियों, सुनते हैं ये पुनः प्रसारित बातचीत।
1: करियर काउंसलिंग कार्यक्रम में आपको जानकारी दिलवाने का जो विषय हमने रखा है वो रखा है नृत्य के क्षेत्र में हम किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं, आजीविका उससे हम कमा सकते हैं, और किस तरह से इसी फील्ड में अगर हम पारंगत हो जाते हैं तो किस तरह से हम आगे तक जा सकते हैं। तो ये जानकारी दिलवाने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती कविता सैनी को। कविता सैनी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, आपका एक लंबा करियर है नृत्य के क्षेत्र में। यशोत्तम, आपको ये बताते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि कविता सैनी जी इस क्षेत्र में 40 वर्षों का अनुभव रखती हैं। किस तरह से हमने इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना है ये सब जानकारियां हम कविता सैनी से लेंगे। कविता जी, पहले तो आपका स्वागत करेंगे कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मैम। धन्यवाद मैम।
1: और कविता जी, आपको ये बताते हुए हमें और अच्छा लग रहा है कि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये टारगेट ऑडियंस प्रोग्राम है, युवाओं के कार्यक्रम में आप आमंत्रित हैं। 18 से 30 वर्ष का युवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित होगा जो भी बातें हम आपके साथ करेंगे। तो पहला सवाल आपसे यही करेंगे, इस क्षेत्र में किस तरह से पदार्पण किया जाए, किस तरह से शुरुआत कर सकता है एक बिगिनर?
2: नृत्य विद्या के लिए मैम सबसे पहले आपको एक मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ता है। आप चाहे किसी भी अपने गुरु से सीख रहे हैं, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने ना बहुत सारे गुरुओं से सीखा
1: जी।
2: मैंने फोक में भी बहुत बहुत काम किया, बहुत सारे गुरु हैं, गुरु थे मेरे जिनके साथ मैंने काम किया। और कथक में भी मैंने बहुत दिल्ली कथक केंद्र में मैंने सीखा राजेंद्र गंगानी जी से, और जिस मुझे जहाँ से सीखने का मौका मिला मैंने वहाँ से सीखा। और मैं मतलब आज के युवाओं से यही कहना चाहती हूँ कि नृत्य करना एक बहुत ही गर्व की बात है, और अगर उसे आप अपने प्रोफेशन में यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने विधा को बढ़ा सकते हैं। और हमारे समय की बात करें तो हमारे समय में इतने इतने ज़्यादा करियर ऑप्शंस नहीं थे
1: जी।
2: बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था सीखने जाने के लिए भी, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, पेरेंट्स से भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को मनवाना पड़ता था कि हम लोग इस लाइन में आना चाहते हैं। अगर बस इस समय की बात करें तो मतलब यू कैन टेक एनी पाथ, यू कैन गो इन स्कूल, स्कूल में आप डांस टीचर लग सकते हैं, जैसे कोरियोग्राफी में आप किसी इवेंट कंपनी से जुड़ सकते हैं
1: जी।
2: आप फिल्म लाइन में आ सकते हैं अगर आप एक अच्छी कोरियोग्राफर हो। तो मतलब हमारा समय और इस समय की बात करें तो इस समय का युवा बहुत कुछ कर सकता है
1: जी। अच्छा कविता जी, आपने कहा कि शुरुआत आपको घर से करनी पड़ी तो काफ़ी संघर्ष आपको देखने पड़े। आजकल के पेरेंट्स बहुत जागृत हैं और बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं हमारा बच्चा कि इस फील्ड में जाए और अपना करियर बनाए, लेकिन अगर हम बात करें चरण के हिसाब से चलें तो पहला स्टेप इसमें क्या है इस क्षेत्र में पदार्पण करने का, कि हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए डांस में?
2: बिल्कुल, सबसे पहले इंटरेस्ट ही होता है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो ही आप कुछ सीख पाएंगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको अच्छी तरह उस चीज़ को, स्किल को अपने अंदर ला ही नहीं सकते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही आपका प्रोफेशन बन सकता है।
1: अच्छा, ए स्टेप वाइज चलेंगे, पहला क्या कदम होगा हमारा ये नृत्य विद्या को सीखने का, ये जो विधा है इसको सीखने के लिए क्या करना है पहले?
2: जो स्किल हम सीखना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी लाइन में जाएं, आप बॉलीवुड में जाएं या आप हिप हॉप में जाएं या आप कोई भी डांस फॉर्म आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसी भी एक अच्छी एकेडमी पे किसी टीचर के पास, गुरु के पास आपको सीखना पड़ेगा। और सीखना भी पूरा बेसिक नॉलेज से, क्योंकि आपका अगर बेसिक नॉलेज अच्छा, आपका फुटवर्क अच्छा है तो यू कैन डू गुड इन योर करियर। तो सबसे पहले यही है कि आपको एक गुरु ढूंढना पड़ेगा अच्छा सा।
1: अच्छा, और गुरु को ढूंढने के लिए आजकल की बात करें आधुनिक युग में तो किसी एकेडमी में जाना पड़ेगा?
2: आप ना आजकल के समय में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, आप रिसर्च कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ एकेडमी इन आर सिटी, आप दिल्ली जा सकते हैं, और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। हमारे समय में तो ऐसा कुछ नहीं था, अब तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, आप अगर आप बिजी हैं, आप स्टूडेंट हैं तो यू कैन टेक योर क्लास इन नाइट 9 to 10, 11 to 10 लोग मतलब रेडी होते हैं, टीचर्स क्लासेस लेने के लिए और अच्छे अच्छे गुरु
1: जी
2: जो मतलब ऑनलाइन क्लासेस देते हैं।
1: अच्छा,
2: तो आज के समय में तो मैम बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इफ यू आर अ वेरी गुड डांसर, इफ यू आर अ वेरी गुड इन योर आर्ट फॉर्म, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं।
1: अगर आपकी दिलचस्पी नृत्य में है तो आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं खुली हैं और आपको बस तलाशनी है, या तो आप सोशल साइट पे तलाश सकते हैं या फिर गाइडेंस के लिए जानकारी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से तमाम जानकारियां हाँ मौजूद हैं। चलिए, ऐसा हो गया, आपने हिप हॉप की बात की, अगर कोई बच्चा हिप हॉप में ही अपना स्पेशलाइजेशन करता है तो उसके लिए कौन कौन से क्षेत्रों में रोजगार संभावनाएं खुलती हैं, कहाँ कहाँ जाकर के वो अपनी इस प्रतिभा को लोगों के आगे रख सकता है?
2: देखिए मैम, मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर डांस का मतलब थोड़ा सा टैलेंट है तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छा परफॉर्मर बनना पड़ेगा। अगर आप परफॉर्मर नहीं बनेंगे तो आपको स्टेज का ज्ञान नहीं होगा
1: जी।
2: अगर आप स्टेज पे आप अच्छे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, आप बॉलीवुड में जा सकते हैं, आप किसी भी मतलब आप किसी भी एकेडमी में आप किसी को असिस्ट कर सकते हैं
1: जी।
2: बहुत अच्छी अच्छी एकेडमीज होती हैं, उनमें आप एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम कर सकते हैं
1: जी।
2: और बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो हिप हॉप का है बहुत चलन है, क्योंकि वेस्टर्न डांस फॉर्म है
1: जी।
2: लोग खुश होते हैं करने के बाद, और आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, स्कूल में काम कर सकते हैं, किसी कॉलेज में काम कर सकते हैं। तो ये जो विधा है, ये जो क्योंकि लोग पसंद करते हैं, आधुनिक युग है तो आधुनिक युग में हिप हॉप का तो बहुत चलन है।
1: और कविता जी, खुशी को जाहिर करने का नाचने से अच्छा और कोई इजहार नहीं होता, तो हम मौके होते हैं, अवसर होते हैं, उन पे नाचने का मन करता है। अच्छा, डांस की अगर हम बात करें, कौन सी डांस फॉर्म ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है कविता जी, ऐसा भी कुछ होता है?
2: आज के समय की बात करें तो लोग ना अपने, मुझे क्या लगता है मेरे परसेप्शन से क्या है, लोग ना अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। लोग ना मतलब आधुनिक युग में ज्यादा घुस रहे हैं। मतलब मान लो अब हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर क्या है, सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है वो है फोक डांसेस
1: जी,
2: क्लासिकल डांसेस जो कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी। बट होता क्या है कि लोग ना बॉलीवुड ज्यादा पसंद करते हैं। होना ये चाहिए कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, बट साथ साथ में ठीक है हम लोग वो कर रहे हैं, बट हमें अपनी जड़ों को तो नहीं छोड़ना ना। हमारा बेस क्या है, इंडिया, इंडिया में हम रहते हैं, तो हमें कथक डांस को या जो भी क्लासिकल डांस फॉर्म है उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। और आज मैं देखती हूँ कि बच्चे ज्यादा जुड़ाव बच्चों का हिप हॉप की तरफ जा रहा है
1: जी।
2: मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ, मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों को समझाने के लिए कि बेटा आप कथक सीखिए जो आपके ताउम्र काम आएगा, बट फिर भी जो बच्चों की मेंटेलिटी है वो थोड़ा सा समय लगेगा, बट वापस जरूर आएंगे बच्चे।
1: बच्चे फिल्मों से ज्यादा प्रभावित होते हैं या जो सीरियल्स आजकल देखते हैं बच्चे उनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो उसी तरफ जाते हैं। अब कथक की बात कर रही हैं, कथक में ऐसा क्या है कि ये हमें आगे ले जाएगा, करियर की तरफ ले जाएगा बच्चों को, ये थोड़ा विस्तार से बताइए।
2: देखिए मैम, जहाँ तक कथक है, कथक अपने आप में एक कथा है।
1: हाँ, कथक मतलब
2: कहे कि कहा तो क्या कहा
1: जी।
2: मतलब अगर आप भावों से, अपने भावों से आप कह देते हो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, चाहे आप पुरातन युग में जाइए, मतलब लोग डांस नृत्य विधा से अपने सारी कहानी को बता देते थे स्टेज पर। और मुझे क्या लगता है, कथक इज ए वेरी गुड करियर ऑप्शन, बिकॉज हमारे इंडिया में कथक केंद्र दिल्ली में जो है NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ जो कथक केंद्र है उसमें इतना अच्छा करियर ऑप्शन है। आप मतलब वहां से सीखिए, वहां से अगर आपने सीख लिया तो आप जिंदगी में कभी, मतलब आपको करियर के लिए कभी परेशानी होना पड़ेगा।
1: अच्छा, किस तरह का करियर बनता है अगर हम कथक में पारंगत होते हैं, कविता जी थोड़ा बताइए बच्चों को।
2: इसमें अगर आप अच्छा कथक सीख लेते हैं, अच्छे गुरु के सानिध्य से आप कथक सीखते हैं, तो आप अपनी एकेडमी ओपन कर सकते हैं
1: जी।
2: सेकेंडली, आप कथक केंद्र में भी टीचर बन सकते हैं। एंड थर्डली, अगर आप, मैं बात करूं तो आप मतलब बॉलीवुड में जाइए, आप वहाँ कोरियोग्राफ कर सकते हैं। आप जैसे बिरजू महाराज जी हैं
1: जी,
2: उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने कोरियोग्राफ किए और उनका कितना नाम है। तो यही है कि पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमारा कथक है क्या। तो वही बच्चों से, मैं आज के युवाओं से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारी जो विधा है उसे पहचानिए, क्योंकि हम ही आधुनिक युग के बच्चे जो होंगे वही हमारे कल्चर को आगे लेके जाएंगे
1: जी।
2: अब जैसे विदेशों में है, विदेशों में जो परफॉर्मेंसेस होती है वो वहाँ पर जाकर, मतलब जो विदेशी नागरिक हैं, जो लोग वहाँ के, वो इतने इंटरेस्टेड रहते हैं कि वो भी कथक सीखें। अब अगर आप कथक केंद्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर 20% जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर NRI, दे आर मतलब फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज।
1: हाँ, ये विडंबना है कविता जी कि हम पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, पाश्चात्य जगत हमारी संस्कृति से प्रभावित है, वो यहाँ आते हैं, बहुत देखने
2: बिल्कुल, में मिलता बिल्कुल, है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल।

0: और हम अनुरोध करेंगे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी संस्कृति की जड़ों को हिलने मत दीजिए, उन्हें थामे रहिए, क्योंकि युवाओं के कंधे पे तमाम जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, आपने ओडिसी नृत्य की बात की थी, तो ओडिसी क्या है?
1: मैम, ओडिसी जो नृत्य है वो उड़ीसा में भुवनेश्वर एक जगह है, भुवनेश्वर उड़ीसा कटक उस साइड होता है। यह भी जैसे नॉर्थ इंडिया में कथक डांस होता है, तो उड़ीसा साइड में वहां पर ओडिसी होता है। ठीक है मैम, वो बेसिकली जो डांस फॉर्म है वो कृष्ण भगवान के लिए, क्योंकि वहां पर कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो कृष्ण के प्रेम में जो जो नृत्य किया जाता है वो ओडिसी डांस फॉर्म आ जाता है मैम। और मैम एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी मैं काफ़ी कंट्रीज जा चुकी हूँ, तो मैंने मतलब जहाँ भी मैं गई, 20 कंट्री में जा चुकी, जहाँ पर भी मैं गई, तो हमारे इंडिया के कल्चर को लोग इतना पसंद करते हैं बाहर, मतलब दे वांट टू लर्न कि इंडिया का कल्चर इतना अच्छा है, चाहे वो कोई भी डांस फॉर्म हो, चाहे वो ओडिसी हो, चाहे वो कथक हो, चाहे वो फोक डांस हो, पंजाबी भांगड़ा हो, लोग इतनी अच्छी तरह सीखना चाहते हैं। तो वही है, बट हमारे इंडिया में हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके माध्यम से भी कि प्लीज हम लोग ही इस विरासत को बचा सकते हैं। तो सबको यही होना चाहिए कि नहीं, पहले हम अपनी डांस फॉर्म सीखें, तभी उसके बाद हम दूसरी चीज़ों पे जाएं।
0: जी, हमें लुभाने वाले काफ़ी आकर्षण जो हैं बाहर हैं, लेकिन हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। पहले हम अपने जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं, हमारी जो नृत्य विधाएं हैं, उनको सीखें। और ये आप यकीन मान के चलें युवा साथियों, कि अगर आप अपनी भारतीय संस्कृति में जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं, अगर आप उनको अडॉप्ट करते हैं, तो आपके लिए करियर की बहुत सारी संभावनाएं खुलती हैं, जैसे कि कविता जी की बातों से जाहिर है। और कविता जी इन सभी विधाओं में पारंगत हैं। अच्छा, एक बात और कविता जी, ये कॉलेज स्तर पे ही क्या कोई पाठ्यक्रम होता है नृत्य का, या आगे चल करके स्नातक होने के बाद हमें कहीं हम जा पाते हैं?
1: नहीं, आप कॉलेज से, जैसे अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद है, प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ में, यहाँ पर आप बहुत सारे कोर्सेज हैं नृत्य से रिलेटेड, आप प्रभाकर कर सकती हैं, आप विशारद कर सकती हैं, उसके बाद आप एम ए इन कथक डांस हो गया, PhD भी हो गई।
0: जी, अच्छा, तो स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन लेवल पे भी हमें विषय म्यूजिक का ऑप्ट करना पड़ता है, या किसी भी स्ट्रीम से हम अगर ग्रेजुएट हैं तो हम आगे म्यूजिक को
1: बिल्कुल आप साइड बाय साइड कर सकते हैं। अगर आप मान लो मतलब आप ग्रेजुएशन में आपके पास कोई और सब्जेक्ट है, बट साथ में कथक का भी या कोई भी डांस विधा ले रहे हैं, तो आ सकता है या आप ले सकते हैं। और आप तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत सारे डांस टीचर्स के ऑप्शंस आ रहे हैं।
0: अच्छा,
1: गवर्नमेंट ने मतलब हमारी सरकार ने इतना अच्छा एक ऑप्शन दिया कि आप अब सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। पहले वो मतलब हर चीज का वेट करते थे कि हमारे हम कैसे डांस सीखे, हम लोग कैसे, हमारा जो भी नृत्य है हम कैसे सीखे, पर सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि वो अब गवर्नमेंट स्कूल में भी टीचर्स को अरेंज कर रहे हैं कि वहां पर वो जाएं और बच्चों को सिखाएं।
0: जी,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: और इसका सबसे अच्छा फायदा ये भी है कि आपकी बॉडी फिट रहती है, आप तंदुरुस्त महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। अच्छा, कुछ और आप बताना चाहें इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चे और क्या क्या करें कि इस फील्ड में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएं और बहुत आगे जाएं?
1: मैम, सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए।
0: वो आपने शुरू में भी कहा।
1: यस, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप म्यूजिक में है, चाहे आप डांस में है, आपके अंदर वो डेडिकेशन होनी चाहिए, सीखने की लगन, एक सीखने की इच्छा। आप मतलब आप जरूरी नहीं है कि आपने एक गुरु से सीख लिया तो आप दूसरे गुरु के पास भी जा सकते हैं। तरह तरह के आप फोक डांसेस सीख सकते हैं। इंडिया में इतने फोक डांसेस हैं, इतना भंडार है ज्ञान का, आप ले सकते हैं। और आप जितना स्ट्रांग आप अपने बेस को बनाएंगे, उतना आप वापस दे पाएंगे। जब आप आगे आने वाली पीढ़ी को देने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। आगे आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि ये हमारे फोक डांस हैं, ये पंजाब का भंगड़ा है, ये हरियाणा का डांस है, ये राजस्थानी का घूमर है, तो ये पता होना चाहिए। तो आप जितना अपना बेस स्ट्रांग करेंगे, जितना नॉलेज बढ़ाएंगे आपकी,
0: उतने ज्यादा आप
1: पारंगत हो जाएंगे।
0: जी जी, अच्छा, और तीजन बाई की पंडवानी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये नृत्य शैली है पंडवानी या गायकी
1: है? नहीं, ये गायकी है मैम। पंडवानी में क्या होता है, बेसिकली जो महाभारत की स्टोरीज होती है उनको आप एज अ गायक गाते हैं। म्यूजिकल, आप एक तारा लेके आप उसको बताते हैं गायकी में।
0: भाई गाती थी साथ साथ उनका थोड़ा थोड़ा डांस भी।
1: बिल्कुल बिल्कुल वो तो हाँ।
0: श्रोतम अभी थोड़ी देर पहले जब हमने ये साक्षात्कार शुरू किया था तो कविता जी ने कहा था कि सबसे पहले हमें अपने लोक नृत्य जो हैं उनकी ओर रुख करना पड़ेगा। लोक नृत्य आपकी पहचान बनाते हैं, न केवल भारत में ही बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप अपने लोक नृत्यों के माध्यम से जाने जाते हैं। तो पहले तो आप इस फील्ड में अपने आप को मांजिए, तराशिए,
1: पारंगत कीजिए,
0: और उसके बाद आप अपना जो कथक है, पुराने ओडिसी है, जैसा भी आपका इंटरेस्ट है उस तरह से आगे जाइए, और उसके बाद पाश्चात्य की ओर रुक कीजिए। तो कविता जी कुल मिला के आप ये कहते हैं कि पहले हम अपने जो हमारे नृत्य विधाएं हैं, बहुत समृद्ध, बहुत संपन्न हमारी संस्कृति,
1: हमारी संस्कृति बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में सबसे समृद्ध जो संस्कृति वो इंडिया की है
0: जी।
1: तो भारत की संस्कृति को संभालना हमारी जिम्मेवारी है। जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स, डांसर्स, कोरियोग्राफर्स जितने अच्छे अच्छे इंडिया में है, मुझे लगता है वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और ये अप्रिशिएट करता है पूरा वर्ल्ड के इंडिया में जो विधा है, इसीलिए वो लोग इतना क्यूरियस होते हैं कि वो भी सीखें इन चीजों को। मैं अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ मैम कि नहीं, युवाओं को आगे आना ही पड़ेगा और हमारे जो लोक नृत्य उनको सीखना ही पड़ेगा, हर चीज को सीख के फिर आपको आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा।
0: तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कविता जी, आप स्टूडियो में आई और आपने हमारे युवा श्रोताओं का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
1: धन्यवाद।
2: और साथियों अभी आप सुन रहे थे ये पुनः प्रसारित बातचीत जो थी विशेषज्ञ डॉक्टर कविता सैनी और अर्चना मिश्र के बीच। और अगर हम जो है एक और बात करें तो जो आज की एक ऐसी समस्या है जो हमारे घर से शुरू होती है और पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाती है, वो है ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा। और आपके घर में मतलब कितने भी पुराने फ़ोन हो या फिर टूटे हुए चार्जर हो, बंद पड़े लैपटॉप या फिर ख़राब टीवी रखे हों, हम उन्हें ना फेंकते हैं ना ठीक करवाते हैं, बस एक कोने में डाल देते हैं और जब फेंकते हैं तो सीधा कूड़ेदान में। और हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है। इन उपकरणों में लेड, मरकरी, कैडमियम जैसी जहरीली रसायन होते हैं जो मिट्टी और पानी में मिलकर हमारी सेहत को और हमारे बच्चों की सेहत को बर्बाद करती हैं। इसीलिए इसका एक साधारण सा और बिल्कुल आसान उपाय है कि जो आप या आपका पुराना फ़ोन है या फिर कोई और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो उसको फेंकने की जगह आप किसी अधिकृत ई वे संग्रह केंद्र में दे दीजिए। कई कंपनियां भी हैं जो आपके फ़ोन की होती हैं, वो अपने पुराने उत्पाद वापस लेती हैं। और थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी जिम्मेदारी और हम अपनी धरती को एक बड़े खतरे से बचा सकते हैं। और सुनते हैं हमारा कार्यक्रम का अगला गीत जो रहेगा फिल्म रॉकस्टार से। इसको गाया है मोहित चौहान और कार्तिक ने, इसके बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है एआर रहमान ने।
3: प्लैटिनम रिकॉर्ड्स शहर टेक 1।

0: सुन नहीं रहे हो यार।
1: ट्रेन का भी लॉज का भी आके जरा बिल तो दे दे जाना। ट्रेन का भी लॉज का भी आके जरा बिल तो दे दे जाना।
2: कैंच में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना।
0: देख

और अभी आप सुन रहे थे ये गीत जो था रॉकस्टार फिल्म से, इसको गाया था मोहित चौहान और कार्तिक ने, बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत दिया था ए आर रहमान ने। और साथियों समय हो चुका है चलने का, फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त कल, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा संसार, मिडिल वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूड की घड़ी में शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त

0: प्राण मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मिनी वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज की शीर्ष कार्यक्रम चर्चा का विषय सुनेगा रात 9:30 बजे सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाज सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित एक विशेष श्रृंखला में मध्यम वर्ग कल्याण पर आप एक कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7:10 पर। ये दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से लेके जाएंगे। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में आप आज सुनेंगे भेंट वार्ता किसान श्री राजकुमार से। इसके अलावा शाम 7:00 ग्रामीण संसार कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बालक मंडली। फिल्म संगीत हम आपको सुनाएंगे रात 8:00। आपकी गीतों और फरमाइशों का कार्यक्रम जो कि पत्रों पर आधारित रहता है प्रसारित होगा मन चाहे गीत रात 10 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम का समय रहेगा 9:15 का। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनेगा 8:25 पर, जिसमें आप सुनेंगे हरिओम शरण की गाई भजन। ये थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम और अब कल के कुछ प्रमुख आकर्षण। शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00। कंट्री वाइड 9:30 और इनसाइट्स 9:45 पर। ये सभी कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल शाम 6:30 आप सुनेंगे साप्ताहिक समीक्षा, जिसे चंडीगढ़ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। कल सुबह 6:50 पर कृषि की बातों में जानकारी दी जाएगी सब्जी फसलों की देखभाल विषय पर। विविधा इस कार्यक्रम में कल सुबह 7:15 में आप सुनेंगे हिंदी वार्ता, विषय रहेगा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में हमारी भागीदारी। वार्ताकार होंगे श्री देवेंद्र सुर्रा। सुबह सवेरे यह कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:25 पर। प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा कल दोपहर 12:30। युवा संसार कार्यक्रम का समय रहेगा 5:30 का। कल शाम 6:20 पर कृषिगत कार्यक्रम में डॉक्टर कुलदीप सिंह से बातचीत का विषय रहेगा कृषि यंत्रों की देखभाल। इसके अलावा 7:00 ग्रामीण संसार कार्यक्रम में डॉक्टर अमित आर्य से बातचीत का विषय रहेगा रक्तचाप कारण उपचार। कल दोपहर 2:30 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा मूंगफली की काश्त। लोक संगीत कार्यक्रम में कल सुबह 8:30 गायक होंगे राम निवास चौहान व साथी। हेलो रोहतक फोन इन पर आधारित फिल्म संगीत आप सुनेंगे कल सुबह 9:00। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा कल दोपहर 1:10 का। फिल्म संगीत हम आपको सुनाएंगे 7:30। एक फिल्म से कार्यक्रम सुनेगा कल 9:15 पर। 8:25 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 262.47 यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। लीजिए सुनी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना। कुलदीप जो कि पुरानी सब्जी मंडी रोहतक से लापता है और इनका हुलिया जो है इस प्रकार है, उम्र 40 वर्ष, रंग सांवला, लमूत्रा चेहरा, पतला फुर्ता शरीर, कद 5'7", नीली शर्ट व काली पैंट पहने हैं, पैरों में चप्पल पहने हैं। कोई भी जानकारी हो तो आप थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक को इनकी जानकारी दे सकते हैं। लीजिए सुनिए अन्य सूचना। संध्या जो कि शिवोजी कॉलोनी रोहतक से लापता है और 1/6/2026 से लापता है, इनका हुलिया इस प्रकार है, उम्र जो है 29 वर्ष है, रंग साफ है, गोल चेहरा है, कद 5'3", हल्के पीले रंग का सूट इन्होंने पहना हुआ है। अगर इनके बारे में कोई भी जानकारी हो तो आप थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक को जानकारी दे सकते हैं। अभी आप सुन रही थी गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। मीडियम वेव 262.47 यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये प्रादेशिक समाचार चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने और कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करने के लिए देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनी और हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता हस्ताक्षर किया गया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया ने युवा वर्ग से साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम करने का आह्वान किया। और मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल कहीं कहीं और 5 और 6 जून को कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के मोरनी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में आज देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनी एमडीएच और हरियाणा के 6 किसान उत्पादक संगठनों के बीच महत्वपूर्ण करार हुआ। विदेश सहयोग विभाग और बागवानी विभाग द्वारा क्रियान्वित इस पहल का उद्देश्य किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना, उनकी आय बढ़ाना तथा कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना है। इस समझौते के तहत पंचकुला जिले के मोरनी क्षेत्र में अदरक, हल्दी, मिर्च सहित विभिन्न मसाला फसलों के व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मसाला कंपनी किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, विपणन तथा खरीद संबंधी सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही हरियाणा में कीटनाशक मुक्त और टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करते हुए किसानों से सीधे खरीद व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जाएगा। किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में मोरनी क्षेत्र को विकसित करने की घोषणा की गई थी, उसी के अनुरूप मोरनी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में आज ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार के घाटा होने की स्थिति में भरपाई की जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को बाजार भाव से 10% अधिक फसल मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रारंभिक चरण में लगभग 4

0: 1000 एकड़ में प्राकृतिक खेती शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता हरियाणा के किसानों को वैश्विक कृषि व्यापार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे हरियाणा के किसान पहली बार देश की सीमाओं से बाहर जाकर अफ्रीकी देशों में खेती और कृषि कारोबार से जुड़ सकेंगे। पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में पार्टी मुख्यालय में उन्हें पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर श्री सुभाष बराला, मोहनलाल बड़ौली, श्रीमती श्रुति चौधरी एवं कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव व अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री नायब सिंह सैनी ने कहा,
1: हमारे प्रदेश के अंदर लंबे अंतराल के बाद डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी ने और पार्टी ने दी है। ये एक पद नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है। मेरे को दायित्व दिया तो मेरे बाद मोहनलाल बड़ौली जी को दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अगर कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है तो किसी भी पद के ऊपर वो जा सकता है।
0: डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की जगह ली है। इस नियुक्ति से पहले वो हरियाणा बीजेपी की प्रदेश महासचिव थी। पदभार ग्रहण करने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता नीचे से सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है।
2: किस भी भूमिका में पार्टी ने आज हमें डाला है, पार्टी में जिम्मेवारी कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर sky is the limit। एक बूथ अध्यक्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष देश का गृह मंत्री बन सकते हैं, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक साधारण कार्यकर्ता जिसने केवल 10 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी में अपना सफर शुरू किया, वो आज आपके सामने पार्टी ने उसको प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका दी। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबकी आकांक्षाओं पर मैं खरी उतरूं।
0: पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता केवल सिंह ढिल्लों ने आज आधिकारिक तौर पर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ का स्थान लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें उनका पदभार ग्रहण कराया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह समेत कई पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी से साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। आज विश्व साइकिल दिवस पर उन्होंने विशेष तौर पर युवा वर्ग को साइकिलिंग को अपनाने को कहा।
3: आज मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ, साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों से पेट्रोल, डीजल आदि ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने का आग्रह किया है। ऐसे में साइकिलिंग एक प्रभावी और सकारात्मक समाधान है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने आज कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि केंद्र सरकार ने 12 वर्ष में जो योजनाएं दी हैं वो उनका लाभ नीचे तक पहुंचाने का काम करें।
4: ये जो महीना है इसमें हमारे मोदी जी की सरकार के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उन 12 वर्षों में उनकी योजनाओं को नीचे तक लेके जाना, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक उसका प्रसार करना और जैसे कि कोई पात्र है तो उसको उस योजना का लाभ दिलवाना।
0: उन्होंने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े स्तर पर मनाने के लिए अपना योगदान देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज दुनिया भर के लोग योग से जुड़ रहे हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल कहीं कहीं और 5 और 6 जून को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। हरियाणा में अंबाला जिले में आंधी चलने और बारिश होने की खबर भी मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी और उसके बाद फिर से बढ़ोतरी होगी। विभाग के अनुसार आज और कल 50 से 60 किलोमीटर राज्य में और 5 और 6 जून को 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से कुछ जगहों पर आंधी चलने और बिजली कड़कने की संभावना भी जताई है। पलवल के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पलवल सहित हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तृतीय चरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस दौरान 15 जून से 14 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यक फॉर्म भरवाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर छिल्लर ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की अर्हता तिथि 1 जुलाई है।
5: हमारी क्वालिफाइंग डेट जो SIR की है वोटर्स के लिए वो 1st of July 2026 रहेगी। 1 जुलाई 2026 तक अगर कोई भी हमारा नागरिक 18 वर्ष का हो जाता है तो वो क्वालिफाइंग डेट के हिसाब से उसकी वोट इस इलेक्टोरल रोल में कंसीडर की जाएगी। डायरेक्शंस के हिसाब से 5 तारीख से 14 तारीख तक का जो फेज है अभी वो रहेगा प्रिपरेशन का, ट्रेनिंग का, ओरिएंटेशन का, जिसमें नागरिकों के साथ RWAs के साथ अधिकारियों की ट्रेनिंग, कर्मचारियों की BLOs की सुपरवाइज की ट्रेनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग, ताकि सबको SIR से संबंधित जितना पता होना चाहिए उसका पता चले।
0: उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों का पुनर्गठन 14 जुलाई तक और ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक रहेगी और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 21 जुलाई से 18 सितंबर तक किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर को होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
6: मिनीवेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:20 और 12 सेकंड हुए हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: जो सिंचित इलाके हैं उनमें 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम उसकी बिजाई का जो समय बाजरे का वो सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया समय। बीज की बात है जहाँ तक, उसमें 1.5 से 2 किलो बीज 1 एकड़ के लिए लगेगा उसमें। और एक बात का जिस तरह भाई पहले बताया था कि ध्यान ये भी हमने रखना है, वो ये है कि भाई अगर मान लिया कोई ऊंची जगह हमारी और पानी हमारे पास नहीं है तो वहाँ धान लगाने की क्या ज़रूरत है। वहाँ हमें बाजरा है या कोई दलहनी फसल है उसकी बिजाई कर सका, हाँ तो वो बढ़िया रहे है। और भाई अगर हमें मान लिया ऊंची जगह पर धान लगा लेते हैं तो फिर हमें मुश्किल मुश्किल हो जाता है, खर्चा ज़्यादा होता है और आमदनी कम हो जाती है, तो उन चीज़ों से बचें। और ख़ासकर जो अपने जागरूक किसान हैं वो तो इस बारे में खूब ध्यान रखें भाई। तो आज आपने एक भेंट वार्ता सुनवाऊंगे क्योंकि बुधवार है, भेंट वार्ता का दिन है, भेंट वार्ता एक किसान से। और आज के हमारे किसान हैं श्री राजकुमार जी, ये पूर्व प्रसारित तो बातचीत है, तो सुनिए बातचीत।
1: भेंट वार्ता एक किसान से भाइयों, इस क्रम में आज एक प्रगतिशील किसान हमारे साथ हैं। आप हैं श्री राजकुमार जी और जो दोंगड़ा अहीर गांव है जिला महेंद्रगढ़ में, वहां से आप आए हैं। राजकुमार जी आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: सबसे पहले तो बताओ कि आपका खेती बाड़ी के साथ में संपर्क संबंध कहाँ से जुड़ा?
2: सर शुरुआत में मैं जब से ग्रेजुएशन किया था,
1: अच्छा,
2: उसके बाद मेरी इच्छा थी कि भाई खेती में कुछ किया जाए
1: जी,
2: और मैंने शुरुआत धीरे धीरे करके खेती में जो नेचुरल जो हम खेती करते थे जो
1: जी उससे
2: हमारे परिवार वो सब पारंपरिक खेती उसी से शुरुआत करी है हमने
1: जी।
2: और फिर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि भाई सीड फार्मिंग की जाए,
1: बीज बनाया जाए। अच्छा,
2: और भी बहुत सी कंपनियों के हमने आज तक सीड बनाए।
1: अच्छा,
2: और लगभग 1000-1500 एकड़ में पर सीजन में ऐसे बीज बनवाए हैं सर।
1: अच्छा, कौन कौन सी फसलों के?
2: सर मूली के,
1: अच्छा,
2: गोभी के और सरसों के सर।
1: अच्छा,
2: और धनिया और पालक वगैरह भी कुछ कुछ मात्रा में लगवाया था।
1: तो इसका किस तरह काम करते थे आप, कब की बात है ये, कौन सी?
2: ये सर 1994 में हमने शुरुआत की थी और ये शुरुआत सिर्फ आधा एकड़ मूली से,
1: अच्छा,
2: और 1.25 एकड़ गोभी से शुरुआत हुई थी।
1: अच्छा,
2: और वो ये 94 वो टाइम था जब पूरा लगभग 1-2 महीने तक धुंध नहीं उतरी थी
1: जी,
2: और सरसों लोग हड़म्फा पे धर के वापिस ले आए थे
1: जी।
2: उस टाइम में हमारी गोभी लगभग 25,000 रुपए की हुई थी 1.25 एकड़ में,
1: और 1.25 एकड़ में,
2: 1.25 एकड़ में।
1: अच्छा,
2: वो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया
1: जी।
2: और मूली का भी अच्छा रिजल्ट था क्योंकि उसका मूली के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं था।
1: अच्छा,
2: और हमारे यहाँ मरगोजा होता है
1: जी,
2: मरगोजे की जगह मूली एक सब्स्टिट्यूट है।
1: अच्छा, उसमें नहीं
2: आता, उसमें असर नहीं करता।
1: अच्छा,
2: तो ऐसे करके धीरे धीरे वो फैलता चला गया। लगभग 700-800 एकड़ में हमारे पास महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम धीरे धीरे शुरू हुआ। और हमारे साथ ही एक हमारे इलाके के विधायक हैं सीताराम जी,
1: जी
2: उन्होंने भी सीड फार्मिंग का काम शुरू, हम और उन्होंने साथ साथ काम शुरू किया था उसी कंपनी से, उन्होंने भी किया था और हमने भी किया था सर
1: जी। तो इसमें बीज बनाने में कोई खास आप प्रक्रिया आप अपनाते थे कि किस तरह से करता थे?
2: सर बीज कंपनी का डॉक्टर आते थे
1: जी,
2: लगभग 15-20 दिन में उनकी विजिट होती रहती थी।
1: ठीक है,
2: और जैसा वो बताते थे उसी हिसाब से करते रहते थे। बीज में मेन तो मूली का तो डायरेक्ट सोइंग से ही बनाते थे
1: लोग,
2: हाँ सीधी बिजाई से ही करते, टुंडी काट के बनाते हैं, काट के भी बनाते हैं कुछ
1: जी जी,
2: पर हम सीधी बिजाई से ही बनाते थे वो।
1: अच्छा,
2: और गोभी में भी एक बार पौध लगाई उसमें कल्ले फुट आते हैं, वो जैसे सरसों में होते हैं उसी तरह से होता है
1: जी
2: बाकी सब।
1: अच्छा, तो इसमें आमदनी आपको कैसी होती? ठीक
2: सर, आमदनी बहुत अच्छी होती थी।
1: अच्छी होती थी।
2: अच्छा, मैं आपको बताऊं कि लगभग ये गोभी जब हमने 94 में शुरू किया, 96 में या 97 की बात है, जब मेरे पास लगभग 3 एकड़ में गोभी थी।
1: अच्छा,
2: और 1 एकड़ से 90,000 की पैदावार हुई थी 1 एकड़ से।
1: अच्छा,
2: पर उसमें एक डर होता था
1: जी,
2: सर्दी मारती थी उसको।
1: अच्छा,
2: उस टाइम में सर्दी नहीं हुई। आज ये पाली यूनिवर्सिटी है जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके सामने मंजूवाड़ा करके एक जगह है
1: जी।

0: हमने वहाँ पे गोभी लगवाना शुरू किया था, उसमें पश्चिम में पहाड़ पड़ता है सर
1: जी,
0: वहाँ आज भी गोभी लग रही है।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे सर्दी का प्रकोप नहीं होता है,
1: मेन बात पहाड़ का असर है।
0: जी जी सर।
1: अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि एक तो मूली है वो वैसे खाने के लिए इस्तेमाल की जाए, दूसरा बीज बनाया जाए, तो कितना का अंतर आपस में देखते हैं?
0: सर एक्चुअल हमने तो खाने के लिए तो नहीं बोई है
1: जी,
0: पर बीज में एक बार, क्योंकि आमतौर पे किसान एक बार में ही उसका हो जाता है, कटाई हुई
1: जी,
0: थ्रेसिंग हो गई
1: जी,
0: उसमें रोज रोज की वो कहते हैं ना लपड़न नहीं रहती
1: जी
0: है।
1: जी ठीक है। तो इसमें और खेती बाड़ी में आपने क्या कुछ काम किए?
0: सर फिर हमने सब ये सोच के कि भाई लगभग 2014 में
1: जी
0: की बात है, मेरे फादर ने कहा कि भाई घर का तो ढंग से खाया जाए,
1: जी
0: और 2014 में मैंने DAP यूरिया और केमिकल्स एक एकड़ में शुरुआत की थी।
1: अच्छा,
0: और धीरे धीरे करके लगभग मेरे पास 4-5 एकड़ के लगभग जमीन है, मैं सारी की सारी, और भाइयों के पास है, वो भी दो, एक भाई है वो भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा
1: जी,
0: ऑर्गेनिक कह लो उसको, जैविक कह लो, कुछ भी कह लो उसको, तो उसमें वो भी कर रहे हैं। और फिर हमने 2020 में एक FPO का गठन किया, सोच यही थी कि भाई किसानों को जैविक पे लाया जाए
1: जी।
0: पर अभी वैसे तो जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो एक तरह से जैविक ही है।
1: अच्छा,
0: बहुत ज़्यादा खाद वगैरह यूज नहीं होते
1: जी,
0: हमारे यहाँ लगभग आधा कट्टा DAP का डालते हैं सरसों में, ज़्यादा से ज़्यादा
1: जी
0: आमतौर पर लोग
1: जी,
0: और यूरिया भी लगभग 1.25 कट्टा के लगभग डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालते, पर उसको भी कम करने की हमारी वो है। और हम कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर रमेश जी हैं
1: जी,
0: उनके सहयोग से किसानों को, SDO हमारे जो एग्रीकल्चर है उनके सहयोग से किसानों को जैविक में लाने का हमारा पूरा प्रयास है। हमारा FPO नाबार्ड के वित्त पोषित है, वित्त पोषित नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित है, और हम एक ऑयल मिल भी उसमें शुरू कर रहे हैं।
1: तो FPO में आपके कितने सदस्य हैं?
0: सर 526 के लगभग सदस्य हैं हमारे।
1: अच्छा।
0: जिसमें 10 हम डायरेक्टर और प्रमोटर हैं, मैं उनमें से एक डायरेक्टर हूँ
1: जी
0: FPO का, और 516 के लगभग जो हैं वो शेयर होल्डर हैं।
1: अच्छा,
0: उनकी 1,000 रुपये शेयर मनी है। हम फिलहाल किसानों को खाद बीज कोशिश करते हैं कि भाई वो जैविक पे ही आए
1: जी,
0: और इनपुट्स जैसे पशु चारा है उस तरह की जो चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जल्दी ही हम, हमारा जो नाबार्ड के साथ जो मीटिंग हुई इसमें हमारा वो था फोकस ये था कि हम 2 साल के बाद एक, अब तो ऑयल मिल शुरू कर रहे हैं, 2 साल के बाद एक आटा मिल शुरू करेंगे, फिर अच्छा, मसाला का काम शुरू करेंगे
1: जी,
0: फिर अचार का काम शुरू करेंगे, हमारी पूरी 5-7 साल की प्लानिंग फिक्स है
1: जी। तो अभी आपकी क्या कुछ गतिविधि रहती है, आपका जो FPO है उसमें जो सदस्य हैं उनकी और आप लोगों की क्या गतिविधियां रहती हैं?
0: सर हम लगभग 2 या 3 महीने में एक किसी एग्रीकल्चर से या कृषि विज्ञान केंद्र से किसी साइंटिस्ट को बुला के
1: जी,
0: और फसलों की जब शुरुआत होती है उस पर तो बुलाते ही बुलाते हैं
1: जी,
0: हम सभी हमारे जो शेयर होल्डर हैं उनको बुला के उनको बताते हैं भाई कैसे क्या किया जाए कैसे नहीं किया जाए।
1: अच्छा,
0: तो बस यार उनको जो भी करना हो क्या करना है बीच बीच में जो उनको गाइडलाइन है
1: जी,
0: और जो हमारा बेनिफिट है FPO का वो सभी किसानों में, जो शेयर होल्डर में सभी में बटता है, ये नहीं है कि किसी एक का है
1: जी। तो उसमें कुछ आपने इस तरह का प्रयास किया कि जिसके पास में जो उत्पाद होता है अपनी जो भी फसल या सब्जी वगैरह जो अपनाते हैं उनको कहीं इकट्ठा करके बेचा जाए या आपस में कुछ शेयर करके कुछ मिला के कुछ इस तरह का भी कुछ?
0: नहीं सर अभी तो नहीं किया है ये
1: जी,
0: पर हमारी प्लानिंग है कि हम करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे ये। कुछ हम डिस्ट्रिक्ट के 4-5 और FPOs हैं उनको मिलके एक हम एक मॉल टाइप में वो बनवाने की कोशिश कर रहे हैं नाबार्ड से।
1: अच्छा,
0: एक ब्लॉक में एक FPO होता है नाबार्ड का
1: जी,
0: तो नाबार्ड के लगभग 5-6 FPO हैं,
1: ठीक है
0: ज़्यादा भी हो सकते हैं
1: जी,
0: जो मेरी जानकारी में 5-6 FPOs हैं
1: जी,
0: उनकी जानकारी वो करके एक सभी का, जैसे नांगल चौधरी ब्लॉक हो गया वहाँ चना ज़्यादा होता है
1: जी,
0: हमारे यहाँ सरसों ज़्यादा होती है, गेहूँ भी होता है
1: जी,
0: और किसी तरफ प्याज ज़्यादा होता है किसी तरफ सब्जियाँ लगती हैं, तो वो एक एक मंच पे आए
1: जी जी
0: और जैविक हो, बस यही प्रयास है थोड़ा सा।
1: जी अच्छा, जैविक की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो बहुत से किसान भाइयों का ये मानना है कि भाई अगर हम जैविक की तरफ जाते हैं, यानी कि यूरिया और DAP कम डालते हैं या नहीं डालते हैं, तो उसमें पैदावार में कमी आती है। तो इस ये जो सोच है, इस वजह से किसान भाई इस तरफ नहीं जा पा रहे हैं, क्या ये सही मानते हैं आप?
0: नहीं, आपकी बात सही है और किसानों की भी बात सही है
1: जी,
0: पर अगर हम सही ढंग से मैनेज करके अगर हम काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि मैं इसका भुक्त भोगी हूँ
1: जी।
0: मैंने शुरुआत में की थी और जल्दी जल्दी में मैंने क्या किया कि मैंने भी केमिकल नहीं डाला, ना ही तो DAP यूरिया वगैरह कुछ नहीं डाला, और फसल का फुटाव भी नहीं हुआ। गेहूँ था उसमें,
1: अच्छा,
0: फसल का फुटाव भी नहीं हुआ
1: जी।
0: फिर मैंने डॉक्टर रमेश से बात की, उनसे कुछ किया, उन्होंने कहा कि भाई धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा
1: एकदम से
0: नहीं करना है
1: जी।
0: तो अब हम जैसे 2-3 किसान जो हमारे साथ धीरे धीरे आ रहे हैं, उनको धीरे धीरे करके ला रहे हैं, उनको कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है।
1: यानी कि एक बार शुरुआत करें आहिस्ता आहिस्ता
0: जी,
1: पूरे खेत में ना से आधे एकड़ में करके देख लें, फिर वो बढ़ा के देख लें, कम से कम इसकी तरफ कोशिश की जाए।
0: जी सर, मैंने भी शुरुआत थोड़े से ही की थी सर।
1: अच्छा अच्छा, तो इस खेती के साथ में कोई और दूसरा आप सहायक धंधा है, मशरूम का है, मधुमक्खी पालन का है, या इस तरह का
0: नहीं सर?
1: कुछ जी,
0: केचुआ खाद हम बनाते हैं।
1: अच्छा,
0: और
1: पशु रखते हैं आप?
0: हाँ, पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं।
1: अच्छा,
0: और क्योंकि बिना पशु के तो खेती होगी नहीं सर
1: जी,
0: बिना गोबर के तो
1: ऑर्गेनिक के
0: और ऑर्गेनिक करनी है तो फिर तो होगी नहीं,
1: जरूरी है।
0: हाँ, तो पशु रखना तो जरूरी है
1: जी जी। तो उसका पूरा गोबर आपका जो केचुआ खाद है उसके लिए उपयोग हो जाता है?
0: जी सर।
1: अच्छा, तो खेत में केचुआ खाद इस्तेमाल करते हैं?
0: हाँ सर, मैं खेत में ही यूज करता हूँ, मैं ही करता हूँ, कुछ
1: अच्छा।
0: बेचता नहीं हूँ मैं खाद को।
1: अच्छा,
0: सारा का सारा मैं खेत में ही डालता हूँ
1: जी। अच्छा, केचुओं की संख्या बढ़ती है तो
0: साथी ले जाते हैं?
1: अच्छा,
0: जैसे धीरे धीरे शुरुआत की भी मैंने शुरू की, दूसरा साथी ले जाता, तीसरा साथी, थोड़ा थोड़े देते रहते
1: इस तरह से।
0: हाँ,
1: दूसरे किसान भाई
0: दूसरे किसानों को दे देते।
1: अच्छा, पानी का क्या साधन आप? क्या
0: पानी? ट्यूबवेल है और हमारे यहाँ खारा पानी है थोड़ा सा।
1: अच्छा,
0: सब्जी का थोड़ा प्रॉब्लम है
1: जी,
0: जो नहर है वो थोड़ा दूर से है
1: जी,
0: और वो भी अब सीमेंटेड हो रही है, पहले इंटो की थी तो उसमें पानी झरता था
1: जी,
0: अब सीमेंटेड हो रही है।
1: अच्छा,
0: तो उससे शायद उसका तो फर्क पड़ना कम हो जाएगा
1: जी।
0: और वैसे हमारे यहाँ कोई नहर से खाड़ा वगैरह है नहीं जिससे नहर से सिंचाई की जा सके
1: जी,
0: तो मोस्टली ट्यूबवेल से होता है।
1: अच्छा, तो उससे काम चल जाता है?
0: हाँ,
1: पैदावार पे कोई असर पड़ता हो?
0: नहीं सर, चल जाता है काम।
1: अच्छा,
0: आमतौर पर खारी पानी है, सरसों गेहूं में काम चल जाता है, सब्जी नहीं लगा सकते आमतौर पर।
1: अच्छा,
0: मैं लगाता हूँ, मैंने थोड़ी सी लंबी लाइन नहर के पास से एक ट्यूबवेल है हमारा
1: जी,
0: वहाँ से दबा के लग रखी, मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ भी करता हूँ उसमें।
1: अच्छा,
0: लगभग 2-2.5 कनाल के अंदर सब्जियाँ करता हूँ, कुछ मैं ले लेता हूँ और लगभग 500-400 रुपये की डेली की बिक भी जाती है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: ये तो बढ़िया है। तो इससे तो एक रेगुलर आय है
0: जी सर,
1: वो बनी रहती है
0: जी सर
1: जी। तो इसके अलावा और आपकी क्या योजना है? जैसे आपने बताया कि नाबार्ड के सहयोग से आपने FPO बनाया, तो इसमें नाबार्ड आपकी क्या मदद करता है?
0: नाबार्ड जैसे हमारे पास अब 500 किसान हो गए
1: जी,
0: 1-1,000 रुपए की उनकी शेयर मनी है,
1: ठीक है,
0: तो नाबार्ड 5,00,000 रुपए की मैचिंग ग्रांट देगा।
1: अच्छा,
0: कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे हमारा पहला प्रोजेक्ट है हम ऑयल मिल लगाएंगे, मस्टर्ड ऑयल मिल लगाएंगे,
1: ठीक है,
0: तो 5,00,000 हमारी संपत्ति होगी, पूंजी होगी
1: जी,
0: और 5,00,000 नाबार्ड मैचिंग ग्रांट देगा,
1: ठीक है,
0: ये तो इसमें हो गया। और वैसे ऑफिस का किराया
1: जी,
0: एक CEO की सैलरी
1: जी,
0: ये नाबार्ड देता है 3 साल तक।
1: अच्छा,
0: जब कंपनी एस्टेब्लिश हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तो नाबार्ड फिर उस पर
1: जी, शुरुआती
0: शुरुआती दौर में,
1: ये जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आजकल जैसे ये देख रहे हैं कि दवाई है, खाद है, और ख़ासतौर से छिड़काव की बात करें तो बहुत से भाई अंधाधुंध छिड़काव करते हैं
0: जी,
1: तो इस तरफ भी आप कुछ ध्यान दे रहे हैं?

0: हैं कि कई बार कीड़ा या बीमारी कोई नहीं आई हुई होती है तो भी किसान भाई छिड़काव करना शुरू कर देते भी इस पे कीड़ा नहीं आएगा।
1: हाँ करते हैं सर,
0: तो
1: बहुत
0: इस
1: से किसान करते हैं,
0: जी
1: पर हमारी तो सलाह उनको यही रहती है, हम कृषि वैज्ञानिकों को बुलाते हैं कि भाई वाहियात की छिड़काव ना करें,
0: जी
1: इससे पैसे के भी
0: बर्बादी है
1: बर्बादी है
0: जी
1: और सेहत की भी तो हानि है ही है
0: बिल्कुल, वो जो भी उसमें अंश
1: और
0: बचता
1: मिट्टी की भी
0: है
1: सेहत खराब होती है।
0: जी। तो मिट्टी पानी वगैरह की जांच करवाते हैं
1: हाँ
0: आप?
1: सर, रेगुलर करवाते रहते हैं, मिट्टी पानी की जांच करवाते रहते हैं सर।
0: अच्छा
1: और हम जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक छोटी लैब हमारी FPO पे ही करें कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं
0: जी
1: उनकी टाइम टू टाइम जांच करते रहें।
0: जी ये खोलने का,
1: हाँ सर,
0: प्रयोगशाला खोलने का
1: जी
0: आपका
1: जी
0: विचार है,
1: जी सर,
0: बहुत बढ़िया जी। तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका ये देख रहे हैं कि वो गांव से शहर की तरफ चले जाएंगे, एक 5-7 हज़ार की जो नौकरी है वो करना पसंद करते हैं। तो बच्चों को, जो नौजवान बच्चे हैं बेरोजगार हैं जिनको रोजगार का कोई आय साधन नहीं मिलता है, तो क्या उनको भी मोटिवेट करने के लिए, उनको भी उत्साहित करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं आप?
1: सर प्रयास तो करते हैं,
0: जी
1: पर आज की जो पीढ़ी है ना
0: जी
1: वो खेती की तरफ बहुत कम वो कर रही है। वैसे मेरा बेटा है, मेरी मेरी हेल्प करता है
0: जी
1: खेती में, मेरी हेल्प करता है, वो वकील है,
0: जी
1: पर जो ही वो घर आता है मेरे साथ मेरी खेती में हेल्प करता है।
0: जी
1: और वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, जब जैसे आज ड्रोन की हो गया
0: जी
1: तो एक तो पढ़ा लिखा बच्चा ही चलाएगा ना इसको, तो
0: बिल्कुल
1: एक अनपढ़ किसान तो चला नहीं सकता,
0: जी
1: तो ड्रोन वगैरह और भी कुछ और
0: नहीं
1: टेक्निकली बहुत है। मैं एक छोटा सा अगर आपकी इच्छा
0: जी जी
1: कहें तो मैं किस्सा सुना सकता हूँ।
0: जी जी
1: मैं 2015 में नासिक गया था, जो
0: जी
1: ही मैंने जैविक खेती शुरुआत करने की सोची मैंने कहा कि भाई कहीं से कुछ कुछ किया जाए,
0: जी
1: तो नासिक में मैं गया तो एक इन्वर्टर बेच रहा था, तीन
0: जी
1: तरह का था, सौर ऊर्जा से भी चलता था, पवन ऊर्जा से भी चलता था और
0: अच्छा
1: बिजली से भी, एक ऐसा इन्वर्टर था। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, मैं देखने लगा।
0: जी
1: वो कहने लगे भाई कहाँ से आए, मैंने कहा हरियाणा से। वो कहा कि मेरा बेटा भी कुरुक्षेत्र में हरियाणा में पढ़ता है। मैं कहा अच्छा
0: जी
1: ठीक है भाई, क्यों आए हैं?
0: जी
1: मैंने कहा कि भाई जैविक खेती को मेरे को ढंग से करना है। तो उन्होंने बोला एक ग्रुप आएगा यहाँ पे, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ।
0: जी
1: उन्होंने मेरे नंबर ले लिए और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। वो 5 दिन का मेला था उस टाइम, कृषि मेला,
0: जी
1: एक स्वामी समर्थ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सहयोग से वो कृषि मेला था।
0: जी
1: तो उन्होंने वो मेरे को फ़ोन किया, उनसे मेरे को मिलाया। उन्होंने ये कहा कि हम 1 महीने के लगभग 1 लाख रुपए कमाते हैं 1 एकड़ से,
0: एक एकड़ से?
1: 1 एकड़ से। मेरे को
0: अच्छा
1: अचंभा हुआ,
0: जी
1: मैं आज भी बहुत कम मानता हूं, पर हो सकता है ऐसा शायद।
0: जी
1: तो मगो भाई कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो सारा प्रोडक्ट है वो जैविक है
0: अच्छा
1: और हमारी एक एसी वैन है डेली मुंबई जाती है,
0: अच्छा
1: और लगभग 65 गांव के किसान थे उस ग्रुप में,
0: अच्छा
1: 65 गांव के किसान थे,
0: जी
1: और डेली वो जाती है, एक किसान जाता है और वैन का ड्राइवर जाता है,
0: जी
1: एक हेल्पर होता है,
0: जी
1: और सारे फिल्म स्टार हैं उनको हम ये प्रोडक्ट देते हैं। दूध भी
0: अच्छा
1: हमारा है, दही भी, छाछ भी, गुड़ भी,
0: जी जी
1: अंगूर भी, सारे गेहूं,
0: और भी
1: अनाज, आटा, सब कुछ हो गया वो,
0: जी
1: और रेट का कोई मायने नहीं रखता उसमें।
0: जी
1: तो मैंने कहा कि भाई चलो आपके यहाँ तो ऐसा है, हमारे यहाँ तो, उन्होंने कहा भाई गुड़गांव तो इससे भी बड़े लोग बैठे हैं
0: जी
1: अगर आप करना। तो
0: जी
1: सर हमारी सलाह है कि उस दिशा में कुछ किया जाए,
0: जी
1: कुछ FPOs और साथ लेके हम एक ऐसा मॉडल बनाएं कि जैविक के ऊपर और किसानों का फायदा भी हो
0: जी
1: और FPO का फायदा हो और खाने वालों का फायदा हो।
0: बहुत बढ़िया
1: और हम वो तो बहुत महंगा बेचते हैं, पर हम
0: जी
1: थोड़ा सस्ता बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ जो सभी को मिले, सस्ती मिले, ये सबसे अच्छी बात है।
0: जी जी बहुत बढ़िया। और इसमें यूथ भी है, युवा भी हैं, वो
1: हाँ
0: भी जुड़
1: युवा,
0: सकते हैं
1: हाँ
0: जहाँ
1: पूरा
0: पर
1: कर सकते हैं सर।
0: टेक्निकल काम है,
1: हाँ
0: डिजिटल काम है, फ़ोन का,
1: बिल्कुल,
0: मोबाइल का, लैपटॉप का, जहाँ पर इनकी ज़रूरत है वहाँ बच्चे भी जुड़ जाएंगे।
1: बच्चे भी जुड़ सकते हैं, मार्केटिंग में भी जुड़ सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट बनाते हैं उस दिन,
0: जी
1: बच्चे मार्केटिंग में जुड़ सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: कमीशन बेस कर सकते हैं।
0: उसमें तो कई काम है,
1: हाँ
0: पैकेजिंग का है,
1: बिल्कुल
0: ट्रांसपोर्टेशन का है, ले जाने का है, भाव वगैरह का है, तो इसमें वो बच्चे इस
1: सर,
0: आपके
1: हमने
0: साथ
1: कई FPOs की बुक की हैं,
0: जी जी
1: विजिट की हैं,
0: अच्छा
1: बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं हम, हमारी भी इच्छा है कि हम बहुत बड़ा काम करें,
0: जी
1: एक नाम हो एफपीओ का नाम जी, हमारा बाबा रूपादास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करके एक हमारा एफपीओ है उसका बहुत बड़ा नाम हो।
0: जी जी बहुत बढ़िया। तो कहीं आपको कोई पुरस्कार इनाम कुछ इस तरह का मिला है?
1: सर जैविक खेती के ऊपर हमारे जो राज्यपाल हैं महामहिम जी गुजरात के राज्यपाल उनसे मेरे को सम्मानित किया गया है और कृषि विश्वविद्यालय से भी एक प्रगतिशील किसान का अवार्ड मिला हुआ है।
0: जी बहुत बढ़िया।
1: वैसे मैं दो तीन जो संस्था है आत्मा स्कीम है
0: जी जी
1: डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है
0: जी
1: उसका भी मैं मेंबर हूँ और साइंटिस्ट एडवाइजरी कमेटी जो कृषि विज्ञान केंद्र की एक साइंटिस्ट एडवाइजरी कमेटी उसका भी मेंबर हूँ
0: महेंद्रगढ़ का।
1: जी सर
0: जी जी बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा अनुभव है आपका और जो आप सोच आप एक लेके चल रहे हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों को साथ लेके ऑर्गेनिक है जैविक खेती है उसकी तरफ कदम बढ़ाने की आप कोशिश कर रहे हैं और हमारी इच्छा है हमारी कामना है कि आप अपने प्रयास में सफल हों और बहुत सारे किसान भाई हैं उनको भी आप मार्गदर्शन देंगे। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने विचार आपने साझा किए अपने अनुभव साझा किए राजकुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: तो ये तो आपने भेंट वार्ता सुनी एक किसान से और आपने ये देखा होगा कि वह किसान न अगर मन से काम करे है और एक उसने दृढ़ निश्चय बना रखा कि मैंने तो ये करना है। आप ये देखो ये राजकुमार जी कहाँ मतलब नासिक तक जा रहे हैं और वो चीज़ें सारी देख के अपने और खुद यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं और देखो ये कह रहे हैं कि वह वहाँ की बात है यहाँ और भी उससे ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन बात ये है भाई एक तो करण की इच्छा हो और फिर उसके बाद मेहनत करे जा तो जाए और जिस तरह अब पहले जिक्र कर रहे थे कि वह जो ये खरीफ की फसलें बिजाई की बात कर रहे थे बिजाई में ये है कि हमने शुरुआत से ये देखना है पहले तो हमने ये फैसला करना कि इस खेत में हमने कौन सी फसल लगानी उसके बाद फिर ये करना है कि भाई कुछ किस्में कौन सी लेनी उसी किस्में उस किस्म क्योंकि सारी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास पैदावार उसकी कितनी है उसके भाव कितने के मिल जाए हैं और उसमें कीड़े बीमारी कुछ नहीं आते ये चीज़ें खाद का कम से कम इस्तेमाल करें रासायनिक खादों का जितना उसका अपना जो ये देसी खाद हैं देसी खाद का प्रयोग करें उतना हमने बढ़िया रहेगा भाई। क्योंकि जो अगर मान लिया हम यूं ही चलते रहे बार बार ये कहा कि जो ज़मीन की सेहत है वह ख़राब हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी तो ये जवाब दे देगी जवाब देने के बाद में हमारे पास फिर कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए अपना ये ध्यान रखना कि अपनी ज़मीन की सेहत तो सवारनी सवारनी हमने उसकी देखभाल रखनी रखनी है। बार बार कहें जहाँ भैया कि भाई मिट्टी पानी की जांच करवा लो मिट्टी की जांच करवाई जा सके उससे तो अपना पता तो चल जाएगा कम से कम हमारी ज़मीन में किन किन पोषक तत्वों की कमी है। और जो अपने वैज्ञानिक हैं उन्होंने तो ये देख लिया कि भाई लगभग ज़मीन में हर पोषक तत्व की कमी होने लग रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने जो देसी खाद है वो डालने बंद कर दी केंचुआ खाद डालनी बंद कर दी और हरी खाद देनी बंद कर दी फसलों के अवशेष हैं वो हमने जलाने शुरू कर दिए उसकी बजाय जो उसमें हमने ज़मीन में मिला देनी चाहिए पहले अपने ज़मीन में मिला दिया अब तो भाई हम कुछ जागरूकता आई है ज़मीन में मिलाने लग रहे लेकिन बीच में जो हमने वो कर दिया उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब हमने ये देखना है कि हाँ भाई अपनी ज़मीन को वापस फिर उसी अवस्था में लाना है और एक जो भरपूर पैदावार दे जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व हों यहाँ तक कि भाई हमने ये देखा है कि जो वैज्ञानिक अपने बताए हैं कि वह जो हरा चारा वाली फसलें उनमें भी इतनी बुरी हालत हो रही है तो इन चीज़ों से बचना है और अपना एक बार फिर जो देसी खाद है उनकी तरफ अपने चलना पड़ेगा तभी जाके बात बनेगी और अपनी ज़मीन की सेहत से हो रहेगी। और बात ये भी मनोरंजन भी है तो आपने रागनी सुनवा दिया गायक कलाकार रहेंगे कुलदीप कुमार और उनके साथी।

भैया ने ये तो रागनी सुनी, गायक कलाकार थे कुलदीप कुमार और उनके साथी। और भैया ई वे कुछ बाजार भाव आ रहे हैं, भैया ने वो बता दे हैं। गेहूं का भाव रोहतक में रहा है 2550, सोनीपत में 2530, पानीपत में 2575, गुड़गांव में 2580, नरवाना में 2520 और फरीदाबाद में गेहूं का भाव रहा 2600 रुपये फी क्विंटल। चने का भाव रोहतक का है 6300, सोनीपत का 6500, पानीपत का 7000, गुड़गांव का 6900, नरवाना का 6800 और फरीदाबाद का है 7160 रुपये फी क्विंटल। जौ का भाव रहा है रोहतक में 2310, सोनीपत में 2400, पानीपत में 2500, गुड़गांव में भी 2500 और फरीदाबाद में भी 2300 रुपये क्विंटल रहा है। सरसों का भाव रोहतक का है 7150, पानीपत का 6165 और फरीदाबाद में 6300 रुपये फी क्विंटल। मूंग का भाव रहा है रोहतक में 9800 रुपये, सोनीपत में 9500 रुपये, पानीपत में 9600 रुपये, गुड़गांव में 9900 रुपये, नरवाना में 9800 और फरीदाबाद में 9000 रुपये फी क्विंटल रहा। मसर का भाव 7900 रुपये रोहतक में है, 7800 रुपये सोनीपत में है और 7800 ही पानीपत में है, 8050 गुड़गांव में, 8000 नरवाना में और 8000 ही फरीदाबाद में इसका भाव रहा है। अरहर का भाव बता दें भाई, रोहतक का 10700, सोनीपत का 10400, पानीपत का है 10280, गुड़गांव का है 11000, नरवाना का 11000 और फरीदाबाद में इसका भाव रहा है 10600 रुपये फी क्विंटल। उड़द का भाव रोहतक का 10400, सोनीपत का 10100 और पानीपत का इस भाव रहा है 10500 रुपये फी क्विंटल और गुड़गांव में इसका भाव रहा है 10600 रुपये फी क्विंटल। गुड़ का भाव है भाइयों रोहतक का 4500 रुपये फी क्विंटल, सोनीपत में 4300, पानीपत में 4950, गुड़गांव में।

0: 4400, नरवाना में 4750 और फरीदाबाद में इसका भाव रहा है 5800 रुपये फी क्विंटल। चीनी का भाव है भाइयों रोहतक का 4400, सोनीपत का 4320, पानीपत 4440, नरवाना 4500 और फरीदाबाद में इसका 5000 भाव रहा है। खांड का भाव 4900 रुपये रोहतक का, 5000 रुपये सोनीपत का, 5000 पानीपत का और 4800 रुपये नरवाना का और 4600 रुपये फरीदाबाद का भाव रहा है। प्याज का भाव रहा है भाइयों रोहतक का 1480, सोनीपत 1500, 1600 पानीपत और 1600 ही गुड़गांव, नरवाना में 1500 और फरीदाबाद में 2000 का भाव रहा है। आलू का भाव है 740 रोहतक का, 800 रुपये सोनीपत का, 1000 पानीपत का, 750 रुपये नरवाना का और 1200 रुपये फी क्विंटल फरीदाबाद में इसका भाव रहा है आलू का। सरसों का तेल की बात है भाइयों, जहाँ तक के 16600 रोहतक के यही भाव सोनीपत में और पानीपत में भी 16600 रहा है, नरवाना में 16500 और फरीदाबाद में सरसों का भाव रहा है 16000 रुपये फी क्विंटल। तो भाइयों ये तो थे बाज़ार भाव। और अब बात है भाइयों, देखो जिस तरह बताया था कि मौसम के बारे में बताया, मौसम का तो कोई इतना खास को नहीं है क्योंकि गर्मी है, गर्मी ज़्यादा इसमें चलती रहेगी। गर्मी से बचाव खुद का करना है, अपनी फसलों का भी और अपने पशुओं का भी, खासकर बच्चे और बड़ों का जो हमने सुरक्षा करनी है वो बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों ई बे देख लो गड्डी का ना, कृषि जगत कार्यक्रम का तो समय हुआ समाप्त, थोड़ी देर में आप सुने कार्यक्रम ग्रामीण संसार।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ, हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
0: आकाशवाणी का यू रोहतक केंद्र है, ई बाई सुने कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाइयों आज बुधवार है, बच्चों का प्रोग्राम हुआ अर्धा, लेकिन अब क्या है कि भाई जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम अपना सिर्फ 10 मिनट का है, इसलिए बच्चों से आज बातचीत नहीं करेंगे भाई। तो बात अब करते हैं पर्यावरण की। भाइयों अब देखा हाँ कितना पर्यावरण मतलब दूषित हो रहा है, अपना चारों तरफ से देखो, किसी भी तरफ से देखोगे आप दूषित ही दूषित है, चाहे हवा का, पानी का है, मिट्टी का है, जो भी चीज़ आप देखोगे प्रदूषित हो रही है। और उसका बड़ा कारण कोई और नहीं है, खुद मानव है उसका कारण। तो इसमें हमें शुरू से ही, जैसे हमें बच्चों को इसमें शामिल करें, बच्चे हैं ना, बच्चों की शुरुआत होगी यहाँ से। बच्चे अगर इसकी ओर जागरूक होंगे, बात मानेंगे, या उनके माता पिता उन्हें बताओगे कि बच्चों देखो जो पर्यावरण है उसको जितना जो दूषित हो रहा है उसको शुद्ध करना है, किस तरह करा जा सके, तो ये अगर हम बच्चों में जागरूकता लाएंगे, खुद एक जागरूक होंगे और फिर बच्चों में लाएंगे, तो क्या होगा कि वह पर्यावरण जो जितना दूषित हो रहा है उसमें शुद्धता आएगी। और वो हमारा जिस तरह बता था, हमारा फर्ज खुद का है, हम खुद करेंगे उसको शुद्ध करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितने पेड़ लगाएंगे उतना बढ़िया है। और छोटे बच्चों का है, बच्चों से भी बात करते, मान लें छोटे बच्चों से कि भी अपने नाम का एक एक वृक्ष लगाओ, छोटे बच्चे चाहे वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, अपने नाम का एक वृक्ष लगा ले। और उस वृक्ष को देखो बच्चों, ये है लगाने लगाने की बात नहीं है कि हमने लगा दिया, चलो एक मैंने वृक्ष लगाया था, मैंने उस चीज़ का लगा था, मैंने तब लगा था, मैं इतने साल का था, 5 साल का था, 7 साल का था, 8 साल का था, उस टाइम पर लगाया था, नहीं, लगाया अपना वृक्ष। और उस वृक्ष को जिस तरह आप बड़े हो रहे हो, आपके माता पिता आपको खिला पिला कर बहुत बड़े करण लाग रहे हैं भाई हर क्षेत्र में, कि वह मेहनत भी करवा रहे हैं आपको, खिलाए पिलाए भी करवा रहे हैं, पढ़ाई भी करवा रहे हैं, आपके पहनावे के लिए भी सारी चीज़ें ला रहे हैं, यानी सारी सुख सुविधाएँ आपको दे रहे हैं। तो बच्चों आपने जो पौधा लगाना है ना अपने नाम का, उसको भी आपने यही सुख सुविधाएँ देनी, पानी देना है बार बार उसको, और फिर उसकी सुरक्षा करने की, बाहर से कोई पशु है या कोई दूसरी चीज़ उसको ना वो कर दे, उसका नुकसान कर दे, वह उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और जब तक वो पेड़ बड़ा ना हो जाता तब तक आपने उसकी देखभाल करते ही रहना और चलते ही जाना, तो जाके बच्चों अब ऐसा होगा, आप बड़े हो जाओगे तब आप दिखाओगे कि भाई ये देखो मैंने लाया था वृक्ष और मैं इतने साल का था उस टाइम पर लगाया था और मैंने इसकी देखभाल करके खुद मैंने इसको अपने हाथों से सजवाया है और इसकी देखभाल करके इसको बड़ा किया। फलदार वृक्ष लगाओगे तो फल खाओगे आप उसके, वो कहें जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो वही बात है बच्चों, आप फलदार का लगाओगे तो फलदार फल मिलेंगे आपने, छायादार के लगाओ तो छायादार उसमें मिलेंगे, छाया मिलेगी आपने। तो इसलिए आपने तो ये वृक्ष लगाने बहुत ज़रूरी है और अपने नाम का एक एक वृक्ष लगाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो भाई ये तो थी इसमें, और ये आपने एक गाना सुनवाएंगे, फिल्म रहेगी फागण आया रे और गायिका है सविता और सखिया।

तो भाई ये तो आपने सविता और सखियों की आवाज़ में हरियाणवी फिल्म फागन आ रहा है गाना सुने। और भाई वो ईव घड़ी का ना देख लो बच्चों, ईव कार्यक्रम का समय हो रहा समाप्त। जय हिंद।

अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रामीण संसार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम की 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
2: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
3: Thank you very much.
2: Thank you. I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
3: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So yes. If we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in deep dive into each of those aspects.
2: Absolutely. Mr. Tandon.
4: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में जी, उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वदिन योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
2: जैसे भी शरद जी ने
4: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
2: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो there has been a significant expansion of the middle class in the last 12 years with more than 25 crore people exiting multidimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
3: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than, Anubha, the population of many of the countries around the world. और देखिए हुआ क्या कि पॉवर्टी इंडेक्स की जो डेफिनेशन बदला गया, यू नो वी चेंज द डेफिनेशन बिकॉज आप पॉवर्टी को पहले कैसे डिफाइन करते थे इतने रुपए रोज का. आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो ऑन न्यूट्रिशन ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीइंग, यू नो सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट. यू नो जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत. सो आई थिंक नाउ देयर आर टॉयलेट्स एट. सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफस्टाइल व्हिच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स. सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी बिकॉज दोज पीपल financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
2: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
3: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time, and today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana. You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics, we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम. और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम तो यू टेक इट इन योर स्टेड. आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह ऐसे ख्याल आते हैं. पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव इज कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले आप कहां खड़े थे. शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो. इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014 और आज आप कहां खड़े हैं. तो अगर आप दोनों को कंपेयर क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं बहुत आसान तरीका है. आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकॉनमी. सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकॉनमी डबल हुई है तो इकॉनमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
2: अशोक जी मध्यम वर्ग की जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं रोटी कपड़ा और मकान और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं. खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है.
4: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी कपड़ा और मकान है और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है. स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है और जैसे अभी बात हो रही थी अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो GDP के दम पर. लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी GST और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया. मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके PLI योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
2: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए, जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
3: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव, वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
2: बिल्कुल।
3: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया, यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इममेमोरियल, सो व्हाट इज न्यू? यस, देयर वाज समथिंग न्यू बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, startup focus on new ideas, and that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. A lot of youngsters, and today just on Startup India there are 2 lakh plus registered startups, and you know you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund,
2: yes,
3: where you know, because these startup look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here, government became an angel.
2: Right.
3: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers,
2: yes,
3: to being job creators, when I talk to a cross-section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
2: yes.
3: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You know, you'll be surprised the participation of women

0: in a year.
1: Yes.
0: I think this has been transformational. And a lot of countries around the world now want to emulate that example.
1: Absolutely.
0: So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch kehna
2: chahte hain? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन I go to a village, I find the things they use, the way they talk, what they wear, the lifestyle they lead is pretty much like a normal town citizen. And there are so many learnings which are happening. A prime minister recently made an appeal which said ki aap online classes lijiye. Kaise ye covid mein hum karte, padhai ki likhai band ho jani thi agar ye connectivity nahi hoti. Bachchon ka koi nuksan covid mein nahi hua. Aaj bhi pradhanmantri ji hum apne videshi mudra bachane ke liye unhone kaha ki aap online classes lijiye. Kyun keh pa rahe hain? Kyunki unko pata hai ki uske peeche internet और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है.
1: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम
0: जो काम किया है उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाके रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना
2: चाहिए? मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है.
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
0: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything, for example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. वेल अ प्लेन जर्नी यूज टू बी अ ड्रीम फॉर पीपल के हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा. आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाएं आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा. अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है. छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे. आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी जल्दी पहुंचना है. आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट में पहुंच रहे हैं विच इज ऑफ इंटरनेशनल लेवल. द थिंग्स वी यूज्ड टू वॉच इंटरनेशनली के इस ट्रेन में टीवी भी होता है इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती हैं आज वो मुझे लगता है आम आदमी की पहुंच में. सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी विच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री.
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है बी इट रोड्स बी इट रेलवेज बी इट यू नो एयरपोर्ट्स जो एक्सपेंशन हुआ है तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है. वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स हैं जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं 225 तक. जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है इसको जो फैल रहा है तेजी से इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं जो एस्पिरेशंस हैं उस पर कितना असर पड़ेगा उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी पहले आपसे.
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो सब एक दूसरे को जानते हैं उनकी मॉनिटरिंग हो रही है और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं. ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है. अब देखिए ना जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं. अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक उसकी पहचान है वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है. इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है.
1: शरद जी आप क्या कहेंगे हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की आकांक्षाओं की अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है आर्थिक विकास देखा है टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है.
0: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047 और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है ये एक आर्थिक सिद्धांत है उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. आपने कहीं सड़क बनाई उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे होटल्स आ जाएंगे अपार्टमेंट्स आ जाएंगे मॉल्स आ जाएंगे इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे. देखिए एक सड़क बनने से और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश की अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं. तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे from where we were.
1: You know, when we talk about the middle class now, one segment of the middle class that I think we have to talk about and we should mention is the women. Women, you know, are the backbone of any middle class family. What in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har vargh ko hua hai. Lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain. Ab aap dekhiye, agar hum बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजना आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होके कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं। आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड, वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली 3 हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News On Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

मिडवीव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम की 7:45 हुए हैं। चलिए आपको सुनाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मैंने प्यार किया फिल्म के इस खूबसूरत से गीत के साथ। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की, बोल हैं असद भोपाले के और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनाते हैं प्रीताप फिल्म का गीत।
1: आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, बोले हैं नंद बख्शी के संगीत आर डी बर्मन का।

0: और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है और रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे मनचाहे गीत। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी रात्रि के 8:25:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत और इसमें हम आपको आज सुनवा रहे हैं हरिओम शरण के गाए कुछ की भजन। तो ये सुनते हैं कार्यक्रम का पहला भजन।
1: गिफ्ट फॉर एवरीवन, कारवा।

0: और इसी भजन के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम ही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुने हरिओम शरण के गाए भजन। मीडियम फीस 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिलीज किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
3: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वे कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था,

0: बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, तो सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया।

और संगीत के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुने छोटी बहू फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हॉर्स पर आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम जिसे दिल्ली केंद्र से लिया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा, तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
3: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं, फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मॉनसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए, क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम बता रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी है कौन कौन सी स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और ISR इंस्टीट्यूट हैं जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 घंटे काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए, और पानी जब फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रियाएं ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कम्पोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कम्पोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जलधारण क्षमता को बढ़ाते हैं और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम प्रयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलकर क्योंकि काम कर रहे हैं इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर आईसर इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के दो दिन बारे मंगलवार को शुक्रवार को कि नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हरास नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है, इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
3: मानसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मानसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य भारत में और दक्षिण पैदी भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये बहुत ही इवन तरीके से चारों महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है, इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है, इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो इसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जाए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहां पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहां किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज्यादा बारिश की भी संभावना है। यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं। जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ कि उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं। उनकी कोशिश होती है जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पे बांध बने हुए हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है, तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है। अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे चार मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में दो बार बताते हैं किसानों को, और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा धान का ही। अगर धान की सब क्षेत्र नीचे हैं जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। और अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है, तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट फीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें 35% पानी बचता है। इसी तरह से SRI विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30-35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहां पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए। खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात की, मध्य भारत की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग एक हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले, साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले, तो उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR जो है ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
2: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है?
3: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह

0: वर्ष के भी कहें या अगर उसको और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एलिनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं अलनीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं लानीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत की में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एलनीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी एलनीनो कंडीशन होती है तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो है कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एलिनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब लानिना कंडीशंस होती हैं तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एलिनो कंडीशंस यानी कि जब समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए नेगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एलिनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मानसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मानसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की यानी कि जो आने वाले जो अभी मानसून का जो सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशन से एलिनो की वीक कंडीशन की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए यह भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यवहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
2: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है, बीज का सही समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिससे कि उसको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फास्फोरस, पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैको भी लाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवारों का भी प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है। मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उनका विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है, और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें, और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
2: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं, और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: और
1: डुबाल
2: साथ
1: जी,
2: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का हम इसकी सूचनाओं का जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमोसफेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती हैं, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम में बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका, ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसको एकत्रित करने के लिए भी कुछ ना कुछ उपाय पहले से बनाए रखे।
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है, और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है?
2: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है, क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, अपने सपने देखता है, तो सपनों में वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सारी संसाधन होने चाहिए। तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी किसी का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है, और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान, बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है, क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई हैं जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ आप ही आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले को सक्षम कर सकते हैं। तो उस सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है, और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है, जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है, तो एक इसलिए एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग-अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
0: जी देखिए, पहले तो भारत मौसम में की अगर हम पूरे वैश्विक स्तर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के, कि वातावरण में एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के, वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके पूर्वानुमान
1: जी
0: दिया जा रहा है।
1: जी
0: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और एआई एमएल को यूज करके यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

मनचाही गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुमन मलिक का प्यार भरा नमस्कार। तो बिना देरी किए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम की पहली फरमाइश के लिए जिन श्रोताओं के पत्र आए हैं, अनारकली बाजार जगराओं से हमारे श्रोतागण हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गावे और सुच्चा पाठक, डवाली हरियाणा से हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बकोलिया, नयापारा भिरही से हैं बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज ईशरगंज, चंद्रकांत, प्राची, ट्यूशी सूर्यवंशी, डेलफ कॉलोनी रोहतक से हैं महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह। आइए आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं अखियों के झरोखों से फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत जिसे गाया है हेमलता ने। ये संगीत है रविंद्र चैन का।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के युगल स्वरों में लीजिए सुनी बॉबी फिल्म काई की, जिसका संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। पसंद आप सब श्रोताओं की है। सादुल शहर से हैं ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। रानगर मधुबनी से हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा, रंका रानी, मौसम गुप्ता, समीता, रुद्र, रीति गुप्ता। लखनऊ से हैं मुकेश गुप्ता, रानी, कुसुम, पलक और पंकुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक निकेतन से हैं मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तमन्ना, राज और गुनगुन। अलीका डवाली से हैं बसंत सिंह, चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनवीत और मनविंदर सिंह पांधा। तो ये सुनते हैं आपकी पसंद का बॉबी फिल्म का एक गीत।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म का नाम है आपके साथ और इस गीत के लिए फरमाइश है दामिनी मनोरा से हैं तुलसी राम डेरे मायावती डेरे संदेश अमिता गुलशन आदेश किरण डेरे और प्रज्वल पंजाब से हैं रमेश कुमार जजोरिया गीता रानी जजोरिया गगनदीप और आर्य जजोरिया महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब बड़ौदा मीनाक्षी चरफी रजनी कार्तिक और युवराज चकला बाजार समाना से हैं पप्पू राज गुश्तिल संगीता जिंदल और हंसमुख जिंदल मुक्सर से हैं बाबू सिंह धीमान बलजिंदर कौर रवनीत कौर निशु बेरड़ी से हैं हुकम करमरकर सुनीता करमरकर हार्दिक प्राची और तनु करमरकर।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं फिल्म एक दूजे के लिए से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए हमारे पास जो पत्र आए हैं वो हैं, नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव, तेजल यादव। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जतीक विरक, मीका विरक की।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अनुरोध और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है। आदर्श कौम बुलियाली हरियाणा से हैं दर्शनलाल बंसल, सुधीर रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी बंसल, कुमार कमल कुमार गर्विश और तमन्ना बंसल। दतरंगी से हैं प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और केंद्र कुमार वर्मा। महाराष्ट्र से हैं नारायण आम खरसी रक्षाताई। पुणे से हैं पंकज बड़ोदे आर्या, आदि शरी सोनम, धनुष पूरे, वी टी बड़ोदे। और महाराष्ट्र से ही हमारे श्रोतागण हैं बाबा साहिब, मीनाक्षी चर्पे, चंद्रप्रभा बड़ोदे। नई दिल्ली से हैं सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता खुराना, राजीव ढींगरा और कन्हैया लाल। मरुर पंजाब से हैं बलराज बार राम कालवा, भोला राम, लक्ष्मी देवी, कुदरत, मनप्रीत, मीवा सिंह, हरप्रीत और शिवराज मान।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे इन सब श्रोताओं की है। न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं रमेश, विनीत और उनके घर के सभी सदस्य। भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल। दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम अदीबा। बागपत से हैं एहसान अली। बक्सर बिहार से हैं शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, राज अंसारी, आसमा खातून, गुलफराज भागलपुरी। डुमराव से हैं वल्ली अला अंसारी, आसमा नाज। काबुड़वा पथरिया से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रेनिका, उत्कर्ष नेताम, रजिम। छत्तीसगढ़ से हैं अनिल, अंजुलका, आदित्य, कृष, श्रीवास्व। पिंडरा से हैं दीपक, रोशन, वंशीलाल, रेखा, श्रीवास्व, श्वेता, देवी, सुरुचि, दिशा, लंबी, श्रीवास्व। आइए आप सब की फरमाइश पर हम आपको सुना रहे हैं सन्यासी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

लता मंगेशकर और मुकेश का गाया आपने गीत सुना, फिल्म का नाम था सन्यासी। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है प्रेम रोग। बोल संतोष आनंद के हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और पसंद आप सब श्रोताओं की है। रघुनाथपुरासी लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित खुशी गोस्वामी। महाराष्ट्री हैं राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर, इंद्राबाई, सुनैना खोबरखेड़े, तनुजा। जलगांव से हैं रामधारी, दीपाली, स्वराज धाड़े। मलोट पंजाब से हैं चिंदर सिंह चिन्ना, सतनाम कौर, दिलप्रीत, गगनदीप, रौनकदीप कौर। मध्य प्रदेश से हैं विजय मोहनिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, अजय, अनाया, सपना, शिवी, सलोनी। बुदेलखंड से हैं नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न कोरोवर। अनूपगढ़ से हैं मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु, सुनील और जनागल। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत, फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत, उनका नाम है द ट्रेन, और इसके लिए हमारे पास फरमाइश आई है दिल्ली से हैं हमारे श्रोता राजेंद्र, मानसी, पुनीत और उनके घर के सभी सदस्य। महाराष्ट्र शिंगोली से हैं शाहजी वोड़के, नंदा, हनुमान, उत्तम, स्वराज। राजनगर मधुबनी से हैं कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांधी चौक राजनगर से हैं मनजीत और उनके परिवार के सभी सदस्य। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और बिमला

और कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनाते हैं अनोखी रात फिल्म का गीत जिसे गाया है मुकेश ने और पसंद आप सब श्रोताओं की है। नागपुर से हैं विशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित, ध्वनि और महाराज से हैं अभिजीत, सरिता, एकांश, सिद्धांत और प्रणीता। पुणे से हैं मंकर, पंकज, आर्या, मीनाक्षी, रजनी, राजन और तनु। इसी गीत को सुनना चाहते हैं बाबू सिंह धीमान। मुक्सर से हैं जो बलजिंदर कौर धीमान और रवनीत। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश है सुधीर नूतन, संदीप कुकलानी, नरेंद्र तनेजा, सुनीता शर्मा की जो कि हैं मॉल टाउन करनाल से।

0: और संगीत के साथ मन चाहे गीत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ही रोहतक केंद्र है, स्टूडियो के खड़े हुए 11 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से ले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

0: में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैश्रम ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।